0: तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
0: अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
1: क्या वो पापा जी मान गए?
0: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना।

की ओर हाजिर हो गई हूँ श्रोताओं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर, और अब से लेकर 11 बजे तक रहेंगे श्रोताओं आपके साथ, करेंगे आपके साथ ढेर सारी बातें, जानकारियां साझा करेंगे और साथ ही साथ सुनाएंगे आपको कार्यक्रम में प्यारे प्यारे से गीत। और श्रोताओं कार्यक्रम में सबसे पहले आइए बताते हैं आपको इस वक्त धर्मशाला का तापमान कितना है। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है और वातावरण में नमी है 81%। जी हाँ श्रोताओं, मौसम जो है पिछले 2-3 दिनों से हम कह सकते हैं खुशनुमा है, खुशमिजाज है, और जहाँ एक तरफ भारी भरकम बारिशें हो रही थी उनसे थोड़ी सी राहत मिली है, और बहुत से लोगों ने अपनी जो बारिश में घर के कई सारे कपड़े या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फंगस या नमी की वजह से ख़राब होने का जिनका डर रहता है, उनको हम सब ने सुखा लिया है। और इस तरह से हमारा जो आज की बात करें या फिर पिछले 2-3 दिनों से जो है हमारा अच्छा खासा जो है ये हफ्ता लगभग बीता है। और श्रोताओं कार्यक्रम में इस वक्त मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, 91.2 MHz पर आपने इस समय हमें ट्यून किया है, और साथ ही साथ मुझे लगता है हमारा फेसबुक पेज भी लाइव हो चुका है, और आप हमें फेसबुक रेडियो गुंजन के फेसबुक पेज पे भी लाइव सुन और देख सकते हैं। और अपने श्रोताओं से एक गुजारिश करना चाहेंगे, श्रोताओं मैंने पहले भी कहा था कि आपको हमारी ये पहल कैसी लगी, अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं आप। कमेंट करने के लिए कोई भारी भरकम काम नहीं करना है, बस हल्का सा अंगूठे से हमें अल्फ़ाबेट्स प्रेस करने हैं, और आपको बताना है कि आपको ये हमारे जो फेसबुक पेज पे लाइव आना कैसा लग रहा है। अपनी जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं वो आप दे सकते हैं, खुले दिल से आपका हम स्वागत करेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई फेर बदल करना चाहिए वो भी हम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और श्रोताओं बातचीत कार्यक्रम में आगे होगी, जानकारियां भी साझा करेंगे, साथ ही साथ प्यारे प्यारे गीत आपको सुनवाएंगे। तो लिए चलते हैं कार्यक्रम में आपको कार्यक्रम के आज के सबसे पहले गीत की ओर, गीत के बाद यूं ही बने रहिए हमारे साथ, आज का विचार भी आपके साथ साझा करेंगे। तो श्रोताओ आइए सुनते हैं कार्यक्रम में आज के गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में आज का जो हमारा कार्यक्रम का पहला गीत है वो आपको सुनवा रहे हैं हम। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये पहला ट्रैक और बने रहिए यूं ही रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब आइए सुनते हैं आज का विचार। श्रोताओं, हर कठिनाई में एक सबक छिपा होता है, बस हमें पहचानने के लिए वो नजर चाहिए। आज का विचार एक बार फिर से दोहरा रहे हैं श्रोताओं, कि हर कठिनाई में एक सबक छिपा होता है, बस हमें पहचानने के लिए उस नजर और नजरिए की जरूरत होती है। जी हां श्रोताओं, जिंदगी में आने वाली हर कठिनाई, हर मुश्किल हमारे लिए एक सबक लेकर के आती है, या यूं कहें कि हमारी जिंदगी को और भी निखारती है, संवारती है। बस हमें उस कठिनाई से ये सीखने की जरूरत है कि वो कठिनाई हमें जिंदगी में क्या सिखाना, क्या बताना चाहती है। अक्सर जिंदगी में मुश्किलें आती हैं और हम घबरा करके कई बार ठहर जाते हैं, या इस तरह से बेकाबू हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बस हमारी ही जिंदगी में मुश्किलें हैं और ऐसी मुश्किलें क्यों हैं। लेकिन जब भी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, वो हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा सबक दे करके जाती हैं जो जिंदगी में अच्छा समय, या यूं कहें कि जिंदगी में खुशियां हमें कभी नहीं सिखा सकती। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में मुश्किल समय आता है, मुश्किल दौर आता है, तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है और घबराहट भी होती है, लेकिन उस समय में धैर्य बनाए रखें और यकीन माने कि वो समय जब निकल जाएगा तो वो आपको ज़रूर निखार के जाएगा। इसलिए ज़िंदगी में आने वाले मुश्किल समय से घबराएं नहीं, उससे क्या सीख मिलती है उससे आप ज़रूर शिक्षा लें। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर, सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में अब समय है प्रादेशिक समाचारों का।

के क्षेत्र में देश भर में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि गत 3.5 वर्षों में इस विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा की मजबूती के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अपने प्रवास के दौरान शिक्षा मंत्री ने क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य के 17 संगठनात्मक जिलों के लिए जिला प्रभारियों व सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। राजीव बिंदल ने कहा कि जिला प्रभारी व सह प्रभारी संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने, संगठनात्मक कार्यक्रमों को गति देने व बूथ स्तर तक पार्टी को और अधिक सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी संगठनात्मक अभियानों और जनसंपर्क कार्यक्रमों को सफल बनाने में इन सभी पदाधिकारियों का अनुभव व सक्रियता संगठन के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन रथों में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए श्री गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जिसे भगवान जगन्नाथ के मामा का निवास स्थान माना जाता है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा 9 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में ठहरते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद उन्हीं रथों पर श्री मंदिर लौटते हैं, जिसे बहुधा यात्रा या वापसी रथ यात्रा कहा जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ यात्रा के पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत कुल्लू जिला में एक दिवसीय

0: प्रशिक्षण व उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला महिला व बाल विकास विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों सहित ICDS पर्यवेक्षक, ब्लॉक समन्वयक सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी कुंदनलाल ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को योजना के प्रावधानों, पात्रता मानदंड सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने सभी फील्ड कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पात्र गर्भवती व धात्री महिलाओं तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाकर समयबद्ध इनका पंजीकरण सुनिश्चित करें ताकि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहें। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के रामपुर खड़ाहन कोटाधार खौलीघाट सड़क मार्ग पर कल साय हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 अन्य यात्री घायल हुए हैं। सूचना के अनुसार सभी घायल यात्रियों का उपचार क्षेत्र के खनेरी अस्पताल में चल रहा है। शिमला जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों को 20,000 रुपए की फौरी राहत राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव कार्य के उद्देश्य से हमीरपुर जिले के बिझड़ी में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में पंचायत के स्वैच्छिक स्वयंसेवियों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में 50 वर्ष से कम आयु के स्वयंसेवियों ने भाग लिया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पंचायत समिति हॉल बिजली में आपदा प्रबंधन परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। परीक्षण के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य करने के व्यवहारिक तरीके सिखाए गए। ये परीक्षण पूरे विकास खंड में 7 चरणों में आयोजित किया गया। प्रत्येक चरण में 7 पंचायतों के 35 स्वयंसेवियों को परीक्षण दिया गया। परीक्षण में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं विशेषज्ञ स्वयंसेवियों को आपदा की स्थिति में राहत, बचाव एवं प्राथमिक उपचार संबंधित जानकारी दी गई। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विनोद ठाकुर ने बताया कि स्वयंसेवियों में परीक्षण को लेकर काफी उत्साह दिखा। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में भी प्रभावी पहल बनकर उभर रही है। योजना का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के वन आवरण को 28% से बढ़ाकर 30% करना है। कांगड़ा जिला के धर्मशाला वन मंडल में इस योजना के तहत विभिन्न समूहों के लोग भी बेहतर कार्य कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: धर्मशाला वन मंडल में पिछले वर्ष लगभग 28 हेक्टेयर क्षेत्र में 22,000 पौधे लगाए गए। इस वर्ष 17 महिला मंडलों, 6 युवक मंडलों और 5 स्वयं सहायता समूहों को अभियान से जोड़ा गया है। हरड़, बेहड़ा, आंवला सहित स्थानीय प्रजातियों के पौधों को प्राथमिकता दी जा रही है। धर्मशाला के निकट घुरकड़ी की ओम नमो नारायण स्वयं सहायता समूह ने लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र से लेंटाना हटाकर 1600 से अधिक पौधे लगाए और उनका सफल संरक्षण किया। समूह की इस पहल ने साबित किया है कि जन भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीण आजीविका को भी नई मजबूती मिल सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ये आदेश जारी किया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हर साल ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं। 15 अगस्त को केवल सरकार द्वारा जारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने और समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। युवा पीढ़ी को नशे की बढ़ती सक्रियता से बचाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में चिट्टा मुक्त अभियान चलाया गया है। इसके तहत विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों व अन्य लोगों को इसके दुष्परिणामों से जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुल्लू जिला के बाशिंग स्कूल में भी नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
3: बुंडलू के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाशिंग में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 200 विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया। इस अवसर पर SP कुल्लू मदनलाल कौशल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि अगर कोई उन्हें नशे के प्रति प्रलोभन देने की कोशिश करे तो तुरंत उसकी सूचना अपने अध्यापकों, परिवारजनों व पुलिस को दें। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 112 पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है तथा शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाता है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने तकनीकी आधार पर नहीं रोका जा सकता OPS का लाभ शीर्षक से लिखा है। हिमाचल हाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा। अमर उजाला ने प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, कानूनन स्थापित यूनिवर्सिटी की डिग्री को सरकारी मंजूरी जरूरी नहीं। अतिक्रमण मामलों में राहत की नीति लाएगी हिमाचल सरकार, शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने खबर को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, गरीब व भूमिहीन लोगों के अतिक्रमण के मामलों में रियायत को बनाएंगे नीति। मौसम से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, 10 साल में सबसे सुस्त मानसून जुलाई का, आधा माह बीता इस बार आधी बारिश भी नहीं हुई, 15 दिनों में 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र को और मजबूती देने के लिए लगातार कर रही है कार्य। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी व सशक्त बनाने के लिए 17 संगठनात्मक जिलों के लिए जिला प्रभारी व सह प्रभारियों की नियुक्ति की। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, 22 यात्री घायल। और कांगड़ा जिला के धर्मशाला वन मंडल में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीणों के लिए रोजगार का भी बन रही बेहतर जरिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और प्रादेशिक समाचारों के बाद सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। श्रोताओं, अब समाचारों के इस अंतराल के बाद लिए चलते हैं आपको गीत संगीत की ओर। सुना रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत, गीत है फिल्म आजा नच ले से। तो एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला पर।

1.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अब चलते हैं जानकारियों की ओर और साझा करते हैं आपके साथ कुछ जानकारियां। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र मोहली खनियारा द्वारा सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश हेतु फॉर्म जमा करवाने की तिथि अब 20 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। जिन छात्रों ने एमए संस्कृत हिंदी अंग्रेजी राजनीति इतिहास अर्थशास्त्र एमकॉम एमएससी तथा एलएलबी के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में प्रवेश हेतु आवेदन किया था तथा संबंधित विषय की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है वे अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर अर्जित प्रवेश अंकों सहित अब दिनांक 20 जुलाई 5:30 तक निदेशक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र मोहली खनियारा धर्मशाला के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। तत्पश्चात कोई भी प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। श्रोताओं ये थी जानकारी 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं आज है 16 जुलाई का दिन। जी हाँ 16 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खास दिन जो है वो मनाया जाता है इंटरनेशनल स्नेक डे अंतर्राष्ट्रीय सर्प दिवस। इसके बारे में भी हम कार्यक्रम में आगे बातचीत करेंगे लेकिन बातचीत से पहले आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप हैं इस वक्त रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ श्रोताओं और मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, आज हम बात करने वाले हैं कि आज है अंतर्राष्ट्रीय सर्प दिवस और इसके बारे में आपको, जैसे कि गीत से पहले हमने बताया था कि 16 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सर्प दिवस जो है वो मनाया जाता है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को सांपों के पारिस्थितिक महत्व के प्रति जागरूक करना, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना और सांपों को लेकर समाज में जो भ्रांतियां और डर फैले हैं उनको दूर करना। तो श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय सर्प दिवस के बारे में कार्यक्रम में हम आगे और भी बातचीत करेंगे और इस अंतर्राष्ट्रीय सर्प दिवस के बारे में जो कुछ खास बातें हैं वो भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। एंजॉय कीजिए और बने रहिए यूं ही रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोता 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय सर्प दिवस के बारे में। आज 16 जुलाई है और आज के दिन मनाया जाता है ये दिवस। और सांपों की सुरक्षा और सांपों से जो हम लोगों के अंदर भय है उन सबको दूर करने के लिए आज का ये खास दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय सर्प दिवस की जो स्थापना है, इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। सांप पर्यावरण में चूहों और अन्य कीटों की आबादी को नियंत्रित करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रोताओं, बात करते हैं सांपों की प्रजातियों और जहर के बारे में, और जिससे अधिकतर लोग जो है वो डरते हैं कि सांप जो है वो जहरीले होते हैं और अक्सर ज़्यादातर सांप होते भी हैं। दुनिया भर में सांपों की लगभग 3,500 से भी अधिक प्रजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से केवल लगभग 20% प्रजातियां ही हैं जो विषैली होती है, या यूं कहें कि 20% जो प्रजातियां हैं वो ही सांप जहरीले होते हैं, यानी कि उनके काटने पर ही लोगों को जो है वो जहर का असर होता है, या कई बार वो सांप इतने जहरीले होते हैं कि लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। श्रोताओं, बात करें भारत की तो भारत में सांपों की करीब 300 प्रजातियां मौजूद हैं। श्रोताओं, ये थी कुछ खास बातें सांपों के बारे में। आज है अंतर्राष्ट्रीय सर्प दिवस और इसी के बारे में हम कार्यक्रम में इस समय बातचीत कर रहे हैं। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। गीत के बाद फिर से हमारी बातचीत और जानकारियां जो है वो यही जारी रहेंगी। बने रहिए आप हमारे साथ यूं ही और सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: more entertainment.
1: श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में अब आपको लिए चलते हैं फिर से आज के दिन की ओर। आज का दिन यानी आज के दिन का इतिहास श्रोताओ आपको अब हम बताएंगे कि क्या कुछ खास घटा था आज के दिन इतिहास में। श्रोताओ 16 जुलाई 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम ने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने की कानूनी अनुमति दी। जुलाई 1945 ट्रिनिटी परमाणु परीक्षण अमेरिका ने न्यू मेक्सिको रेगिस्तान में दुनिया के पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण ट्रिनिटी परीक्षण किया जिसके साथ ही परमाणु युग की शुरुआत हुई। श्रोताओं 16 जुलाई 1969 अपोलो 11 की उड़ान मानव को पहली बार चंद्रमा पर ले जाने वाले ऐतिहासिक अमेरिकी अंतरिक्ष मिशन अपोलो 11 ने कैनेडी स्पेस सेंटर

16 जुलाई 1661 कागजी मुद्रा। स्वीडन के बैंक ऑफ स्टॉकहोम ने यूरोप में पहली बार कागजी नोट जारी किए। और श्रोताओं, 16 जुलाई 1909 अरुण आसिफ अली, भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत रत्न से सम्मानित, जिन्हें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इनका जन्म भी 16 जुलाई को यानी 16 जुलाई 1909 को हुआ था। श्रोताओं, ये थी कुछ खास घटनाएं जो 16 जुलाई के दिन इतिहास में घटी थी। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, आप चलते हैं मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप बने हुए हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। यूं ही बने रहिए श्रोताओं और सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, आपकी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाएंगे और ये गीत है कलंक फिल्म से घर मोरे परदेसिया। श्रेया घोषाल की प्यारी सी मीठी सी आवाज़ और इस गीत को आप जितनी बार भी सुनते हैं उतनी बार फिर मन करता है सुनने का। इसकी सरगम कहें या इसके बोल कहें या इसका पूरा का पूरा संगीत कहें, इसको सुन करके जो संगीत प्रेमी हैं वो अंदर से ज़रूर खुश हो जाते होंगे। एक खुशी की लहर सी जो है वो हम कह सकते हैं उठती है इस गीत को सुन करके। तो चलिए आप भी सुनिए और खुशी की लहर के साथ आप भी झूमिए इस गीत के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं टू एंड इस टाइम रेडियो गुंजन धर्मशाला सीत है। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस टाइम टू हूँ वर्तन ते लाइव भी है। इंदा जरा रेडियो गुंजन दा फेसबुक पेज आता थी अंदर प्रोग्राम इंदा तू ए होने भी सकता है, एरी भी सकता है। अते टाइम टू टाइम जाने भी असी आहे बल्ले सकते कि निर्देश बुंदन आदेश बुंदन तो असी प्रोग्राम के दौरान लाइव भी इना पैंता तुसी ते रूबरू होना पैंता फेसबुक पेज के माध्यम से तय। अते कुछ दिलारी गल्ला कर देना है, कुछ जानकारी साझा कर देना तो आजो तुसी ते गपशप करनी है। गपशप ए श्रोताओ कि अजकल जड़ा इंदा रिश्ते न तत्ती जड़ा आहे बल्ली रूप स्वरूप आ सो बिल्कुल बदल रहा चल रहा। पहल की गल करी तो पहल इंदा जड़े परिवार थी है सो जॉइंट फैमिली बनती थी, अब एकल परिवार की तरफ आहे बढ़ वरदे न। असी लगते कि एकल परिवार बुने तो असू ज़्यादा खुश बुना, हालांकि एकल परिवार बुने बाद भी अलग टाइप की जड़ी न प्रॉब्लम सो बनती न। पर चलो ये तो हुई जॉइंट फैमिली तो एकल परिवार की गल, पर आऊँ जी खास गल अज तुसी ते सांझा करना चाहते हो श्रोताओ सो ये है कि अजकल रिश्ते रा जड़ा ना सो बड़ा ही बुरा हाल आ। यह गल्ला तू है ज़्यादा मतलब सीरीयसली मत लेंदे पर थोड़ी नहीं सीरीयस लेने वाले हाँ भी कि इनके जड़े रिश्ते न पहले है रले मिले कर रेंदे है भाई बंदी चाचे ताऊ। अजकल मैं ही हेरू आ बल्कि तू भी हेरदे हुणे न इनके आपसी जड़े रिश्ते न खासकर सरीका है तो अजकल है ही बलते रहते कि ये तो सरीक इन पर बड़े भरी गाने भी बनाई तो इनकी सरीक बुरे होंगे ये आंदा तो आंदा ऐसा कुछ नहीं आ। अस उपर डिपेंड करता कि आहू कि हाँ प्यारा ही तो रहना रले मिले कर रहना तो ना सिर्फ शरीक अजकल तो मामे चाचे ताऊ मौसी का भी बड़ा बुरा हाल आ। मतलब ऐसा नहीं है कि सब भी बुरा हाल आ पर कुछ एक परिवार तू है अपने आस पास ही पूछ सकता इनके अपने ही सो परिवार या रिश्ते न कि इन दिकस की ही तय सो बोलते ना बनौत नहीं आ आहे बोलते कि ना ना इन्या ही तताब है रिश्ता ही खत्म करी ना कभी कहना ही नहीं आ बर्तन भी ना रखना। तो मुझे लगता ही है ना बंदा थोड़ा गुस्सा नाराज की सभी ही तो बुंदे आ थोड़े टाइम मरदाए बुंदे आ पर अगर टाइम लगता तो असी उसो जरा इनका गुस्सा नाराज की असू खत्म करी देना चाहते हाँ। अति कभी मौका मिलता रले मिले करे फिर बहने रहा रहने रहा तो जरूर असी वो जी असो अपने रिश्ते जिन सो सुधारना चाहते हैं संवारना चाहते हैं। श्रोता वो हल्की नहीं जिंदगी आ भरोसा ना हूँ मैं तुसी ते पिछले लाइव अंदर भी इंदी अंदर गलबात करी ही कि पलरा पता ना हूँ कोई एक्सीडेंट ही तो मर वरदे कोई असमय मृत्यु कुछ भी बहाना लग वरता दुले फिर मन अंदर मलाल रही गंदा कि और फलाने बंदे तो हुए गलबात करनी ही जसी तो करनी ही सो भी ना रहू या पुछ सकता अगले पल आहे न रहन। तो आऊँ ये कहना चाहते हैं ये बोलना चाहते हैं कि हल्की नहीं जिंदगी आ रले मिले घर प्यारा ही तरिया अते दिलारी गल्ला न कसकी तो लाने सो कुतु कुसो भी लाई लिया कहे कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं आ हंसी खेल करी जीने ताएं परमात्मा जिंदगी असी देत रहा इसी हंसी खेल करी तू जी सो व्यतीत करा मेरा ये हल्का इना संदेश आते अचानक ही अनायास ही बोले सकते कि हिंदी में गल करते करते मेरे मुँहों गादे निकल आया गदयाली अंदरों गल करो दिया तो उम्मीद करते कि हिंदी हुनने वाले इनके जड़े श्रोता न सो समझ वरदे मेरे भाव कह न कह कि कोई भी लैंग्वेज आ कोई भी बोलिया तो तेरे भाव जड़े न सो समझना जरूरी हुंदा अते थोड़ी भी मुश्किल नहीं है गदयाली की समझना आई आ तो अपनी जड़ी बोली हुंदी सीधा दिला तक उतरते मेरा ये जड़ा हल्का ही ना अज इस कार्यक्रम के माध्यम ही तो संदेश आ सो यही है कि अपने जड़े रिश्ते तीनों बचाए करे बनाए करे संवारे करे रखने की कोशिश अकबरी जरूर करा। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता तू इस टाइम रेडियो गुंजन धर्मशाला से आऊँ तुम्हें रेडियो दोस्त पिंकी ते कार्यक्रम होने वर्ते तू इस टाइम गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम ये चल रहा चलता रहना 11 बजे तक ते तुसी होना कार्यक्रम का अगला बढ़िया जीना प्यारा जीना गीत जी।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, आज 16 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सर्प दिवस आज के दिन हम मना रहे हैं। और अब बात करते हैं सांपों के बारे में, कुछ हैरान करने वाले तथ्य श्रोताओं आपके साथ साझा करेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय सर्प दिवस आज मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में सांपों के प्रति जागरूकता फैलाना, उनसे जुड़े हुए अंधविश्वासों को दूर करना और पर्यावरण में उनके महत्व को समझना। अब सांपों के बारे में हैरान करने वाला तथ्य ये है कि पूरी दुनिया में विविधता, अंटार्कटिका, आइसलैंड और ग्रीनलैंड को छोड़कर दुनिया के हर कोने में लगभग 3,500 से भी अधिक प्रजातियों के सांप जो हैं वो पाए जाते हैं। और श्रोताओं, सांपों के पास पलके नहीं होती, इसलिए वे अपनी आंखें खुली रखकर ही सोते हैं। उनकी आंखों पर एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है जो उनकी रक्षा करती है। सांप अपनी नाक से ज्यादा अपनी जीभ का इस्तेमाल जो है वो सूंघने के लिए करते हैं। वे जब अपनी जीभ बाहर निकालते हैं तो वो हवा में मौजूद गंध के कणों को पकड़कर अपने मस्तिष्क तक ले जाते हैं। और श्रोताओं, आपने भी देखा होगा कि जब कभी आपको सांप को करीब से देखने का मौका मिलता है तो सांप जो है वो अक्सर अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं, जीभ को लपलपाते हैं। इसका मतलब यही है कि वो जीभ से सूंघने की कोशिश कर रहे हैं। श्रोताओं, सांपों के बारे में और भी रोचक तथ्य हैं जो हमें जो है हम आपको बताएंगे, लेकिन कार्यक्रम में अंतराल एक प्यारे से गीत के लिए, गीत के बाद फिर से वापस आएंगे और ये हैरानी वाले सांपों के बारे में जो तथ्य आपके साथ साझा कर रहे हैं हम, इनको उसी तरह से जारी रखेंगे। आइए चलते हैं कार्यक्रम में, कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

शुद्ध 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम गीत से पहले बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सर्प दिवस के बारे में। जी हाँ, इंटरनेशनल स्नेक डे है श्रोताओं आज, जो कि मनाया जाता है विश्व भर में। और गीत से पहले हम बात कर रहे थे सांपों के बारे में, बड़े दिलचस्प जो तथ्य हैं उनको आपके साथ साझा कर रहे थे। उन्हीं में से एक है कि सांप जो है वो हवा में भी उड़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में पेड़ों पर रहने वाले फ्लाइंग स्नेक यानी उड़ने वाले सांप पाए जाते हैं। ये अपनी पसलियों को फैलाकर एक पैराशूट की तरह हवा में ग्लाइड करते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा सकते हैं। और श्रोताओं, सांपों के बारे में एक और रोचक तथ्य ये है कि ये सालों तक बिना खाए भी जिंदा रह सकते हैं। जी हाँ श्रोताओं, कुछ सांप ऐसे हैं जैसे कि अजगर, पाइथन, इन्हें धीमे चयापचय के कारण 1 से 2 साल तक बिना कुछ खाए जिंदा रह सकते हैं ये सांप। इसके अलावा बात करेंगे हम सांपों की जो है वो पर्यावरण में क्या भूमिका है। तो सांपों की पर्यावरण में क्या भूमिका है, किस तरह से पर्यावरण को ये बचाते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे श्रोताओं। लेकिन पहले आपको सुनाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यार।

श्रोता 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोता कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सर्प दिवस आज के दिन जो है वो मनाया जाता है। और सांपों की पर्यावरण चिकित्सा में क्या भूमिका रहती है, अब आइए इस पे नजर दौड़ाते हैं श्रोताओं। श्रोताओं, सांप जो है वो प्राकृतिक कीटनाशक का काम करते हैं। किस तरह से? सांप जो है वो चूहों और कीटों को खाते हैं। चूहों को खाकर वे किसानों की फसलों को बचाते हैं और बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। कई जहरीले सांपों के जहर से जीवन रक्षक दवाइयां जैसे ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों की दवाइयां जो हैं वो भी बनाई जाती हैं। तो श्रोताओं, ये थे सांपों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। और आज है अंतर्राष्ट्रीय सर्प दिवस और आज के दिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि सांप जो है वो प्राकृतिक रूप से हमारी रक्षा भी करते हैं और प्राकृतिक कीटनाशक का काम भी करते हैं। और हर सांप जो हमें दिखता है ज़रूरी नहीं वो जहरीला हो। और अक्सर हम लोग सांपों को देखकर जब भी हमें कोई सांप दिखता है तो डंडे लाठियां उठाकर उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनको जान से मार देते हैं, जबकि ऐसा करना जो है वो गलत है। सांप प्रकृति का ही हिस्सा है श्रोताओं। और जैसा कि हमने कार्यक्रम में बताया कि किस तरह से प्राकृतिक रूप से वो प्राकृतिक कीटनाशक का काम करते हैं और सांप जो जहरीले होते हैं, इवन वो जहरीले होते हैं फिर भी उनका जहर जो है वो हमारे मनुष्यों के लिए दवाएं बनाने के ही काम आता है। इसलिए कठोरता और निर्दयता से उस वक्त बिल्कुल भी पेश ना आए जब आपको कहीं पे भी सांप दिखे। वो अपने जो उनके प्राकृतिक घर हैं उनकी ओर जाने के लिए अगर अग्रसर हैं तो उन्हें बिना छेड़छाड़ के वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने दीजिए। उनका भी जीवन जीने का जो है अधिकार है वो हम उनसे छीन नहीं सकते हैं श्रोताओं। तो ये था श्रोताओं आज के अंतर्राष्ट्रीय सर्प दिवस के बारे में हमारी जानकारियाँ भी और हमारी बातचीत भी। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ श्रोताओं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब चलते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। और श्रोताओं ये गीत है सलामे इश्क फिल्म से। एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 91.2 MHz पर।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, आपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, समय जो है वो बढ़ रहा है अपनी रफ्तार के साथ, और समय की एक खास बात होती है कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, वो चलता रहता है निरंतर। और अक्सर समय के बारे में कहा जाता है कि किसी का समय जब खराब होता है ना, तो बस खराब हो ही जाता है। उसी तरह से जब किसी का अच्छा समय चल रहा होता है, तो कोई कितनी ही कोशिश कर ले, वो समय अच्छा ही होता है, अच्छा ही रहता है। और श्रोताओं, समय के बारे में ये बात बहुत ही अच्छी है, चाहे समय अच्छा चल रहा हो, चाहे समय बुरा चल रहा हो, वो किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, आपका भी या किसी का भी। समय चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, खास बात समय की यही है कि वो कभी भी रुकता नहीं है या एक जैसा नहीं रहता। इसलिए ज़िंदगी में कभी अच्छा समय आए तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो खुश नहीं होना है, बहुत ज़्यादा गुरूर और घमंड नहीं करना है। उसी तरह से अगर बुरा समय आए, मुश्किल दौर आए, तो हमें हताश और निराश नहीं होना है, और ये नहीं मान लेना है कि ये हमारे ही साथ हो रहा है और ज़िंदगी में शायद ऐसा ही रहेगा। समय अच्छा हो चाहे बुरा हो, बदलता ज़रूर है। कुदरत का नियम है, रात है तो सुबह भी होगी, और सुबह अगर है तो धीरे धीरे शाम ढलेगी और फिर से रात होगी। इसी तरह से समय का चक्र भी चलता रहता है और हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती रहती है, कभी अच्छा समय कभी बुरा समय, कभी खुशियाँ कभी गम, इसी तरह से ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। और हमें हर तरह की सिचुएशन में जो है वो सामान्य रहने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि सामान्य रहना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने आप को संयमित करके हम किसी भी काम में जो है वो जीत पा सकते हैं। और इंसान वही सुखी रहता है श्रोताओं, जो हर सिचुएशन में

श्रोताओ 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ अब आ गया है समय आपसे विदा लेने का इसी वादे के साथ कि आपसे बहुत जल्द फिर होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए यूं ही रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अब इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म तुम मिले से।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मुझे पढ़ना है, मुझे उड़ना है।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए। तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, अगर जान गए तो।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: तो बिजली बचाओ, देश बनाओ।
1: इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मना ही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट पीड़ी दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान न करें न करने दें।
2: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
3: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
2: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
3: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
2: क्या वो पापा जी मान गए?
3: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका, अब तो खुश हो ना।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना, क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट पार्ट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुकिए रुकिए रुकिए रुकिए,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए, गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए, फिर
1: ओ यस यस हां सर,
0: तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, अगर जान गए तो।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: तो बिजली बचाओ देश बनाओ।
1: इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर।

0: शहर को हुआ क्या? मना ही है, कानून है, फिर भी सिगरेट का जुनून है। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें।
1: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
2: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
2: अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके।
1: क्या वो पापा जी मान गए?
2: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गेन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ।

0: और मैं ऑर्गन इंडिया की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में जो कि अंग दान देह दान के लिए समर्पित है और इसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। दोस्तों जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जीवन एक अनमोल उपहार है। अनमोल मतलब इसका हम मूल नहीं लगा सकते। आप अन्न दान कर सकते हो, आप धन दान कर सकते हो, लेकिन जो अंग दान है वो इतना महान है कि आप सीधा सीधा किसी की जिंदगी बचा रहे हो और उस जिंदगी को बचने के बाद वो इंसान क्या कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये अंग दान जो है वो सबसे बड़ा दान कहलाता है। इसी सीरीज में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक किडनी डोनर हैं। इन्होंने 1993 में अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी डोनेट कर दी थी। ये इंदौर के रहने वाले हैं। तो चलिए आज इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 1993 में जब इतने कम अंग प्रत्यारोपण हमारे देश में हो रहे थे और अंग दान जैसी चीज तो बहुत बड़ी थी, मतलब नामो निशान नहीं था इसका, तो उस समय पर भी इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया और अपने भाई की जान बचाई, तो अब जाके ये कैसा फील करते हैं, सब चीजें जानेंगे हम। विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। विवेक जी जैसा कि मैंने श्रोताओं को अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने अपने भाई को किडनी डोनेट कर दी थी, तो थोड़ा सा आप इस बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, एंड फिर आप ये बताइए हमारे श्रोताओं को कि आपके जो भाई थे जिन्हें आपने किडनी डोनेट करी और जिनको किडनी की जरूरत थी, वो उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट हुई सब और किडनी ट्रांसप्लांट तक कैसे बात पहुंच गई।
1: एक्चुअली मैं अभी रायपुर में रहता हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, और यहाँ पे एक कंपनी में एज ए कंसल्टेंट सर्विस कर रहा हूँ। जब मैंने किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत, मेरे ब्रदर को कुछ तबियत खराब थी और उसके बाद उनको कुछ इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण उनकी किडनी फेल हो गई और डॉक्टर ने बोला कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। उस समय हम लोग छत्तीसगढ़ में ही रहते थे, राजनांदगांव में रहते थे, और यहाँ आसपास पूरे सेंट्रल इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांट किडनी से रिलेटेड किसी भी इलाज किडनी से
0: सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
1: हाँ, डायलिसिस वगैरह कोई भी चीजें उस समय उपलब्ध नहीं थी सेंट्रल इंडिया में, सिर्फ तुलसीराम हॉस्पिटल इंदौर में ही ये सुविधा उपलब्ध थी। और मेरे फादर डेप्टी कलेक्टर थे उस समय, एमपी छत्तीसगढ़ एक ही था, तो मेरे पिताजी ने अपना ट्रांसफर मेडिकल ग्राउंड पे इंदौर करवाया और इंदौर में फिर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। मेरे ब्रदर का दो बारी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, एक बारी मेरे जी
0: मतलब आपने जिस समय किडनी दी थी वो सेकंड ट्रांसप्लांट था उनका।
1: जी जी, उस समय उनका सेकंड ट्रांसप्लांट था जो कि 93 में हुआ था, उससे पहले 89 में फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ था।
0: ओके, चार साल पहले करीब एक और ट्रांसप्लांट होता, तब किसने किडनी डोनेट करी थी अपनी?
1: तब मेरे फादर ने किडनी डोनेट करी थी।
0: ओके ओके, ठीक है
1: जी जी।
0: तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमने अपने पहले के शोज में भी बताया है कि जो इंडिया में जो कानून है वो 1994 में पहली बार आया था इस किडनी ट्रांसप्लांट को या अंग प्रत्यारोपण को लेकर जो कानून बनाया गया था, जिसमें ब्रेन डेथ के बारे में भी बताया गया था, वो 1994 में आया था। मतलब उससे पहले कोई कानून ही नहीं था हमारे देश में ट्रांसप्लांट की सर्जरीज को और अंगदान की सुविधा को लेकर। तो सर आप ये बताइए कि उस टाइम पर जब इतना अवेयरनेस ही नहीं थी, आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है पहले के कंपैरिजन में, बट उस टाइम पे तो इन चीजों का नामो निशान भी नहीं था, कानून ही नहीं था, तो उस टाइम पर चीजें कैसी थी, मतलब कैसे आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। फादर के टाइम पे तो बहुत ही पुराना है, बट आप अपने टाइम की चीजें बताएं कि उस टाइम पर क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको। मतलब मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग तो ये कह सकता हूँ कि ज्यादा समस्या नहीं होंगी क्योंकि कानून ही एग्जिस्ट नहीं करता था, तो कोई गाइडलाइंस ही नहीं थी।
1: नहीं जी, गाइडलाइंस की बात डॉक्टर साहब नहीं है, गाइडलाइंस भी नहीं थी, और दूसरी बात ये थी कि उस समय जो हमको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ब्लड अरेंज करना रहता था उसके लिए भी हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। डॉक्टर बोलते थे कि 5 यूनिट 6 यूनिट आपको एडवांस में ब्लड अरेंज करवा के रखना पड़ेगा, तो उसके लिए ही हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था।
0: बिल्कुल समझ सकता हूँ, उस टाइम पर कोई सोशल मीडिया नहीं था, आज के जमाने में सारे आई बैंक वेबसाइट से कनेक्टेड है, उस टाइम तो ये सब कुछ नहीं था।
1: तो उस समय हम लोग इस चीजों को काफी मुश्किलों से इन सब चीजों को काफी एक एक बंदे को हम लोग को मतलब इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड डोनेशन के लिए उनको लाना पड़ता था। ब्लड डोनेशन का भी उस समय उतना अवेयरनेस नहीं था।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैं मान सकता हूँ। तो दिवाली जी आप ये भी बताइए हमारे श्रोताओं को कि जैसे फर्स्ट ट्रांसप्लांट के टाइम पर आपके भाई की एज कितनी थी?
1: फर्स्ट ट्रांसप्लांट मेरे ब्रदर का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 1964। फर्स्ट ट्रांसप्लांट 1988 में हुआ था तो उस समय उनकी एज 24 ईयर्स की थी।
0: ओके सो मतलब फर्स्ट ट्रांसप्लांट के टाइम पर 24 एंड सेकंड ट्रांसप्लांट के टाइम पर 28
1: उनकी 28-29 ईयर्स की
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। सो उस टाइम पर जब पहला ट्रांसप्लांट तो हो चुका था ऑब्वियसली आप लोग एक समस्या से उभर चुके थे, लेकिन जब डॉक्टर्स ने बताया कि दूसरा ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और ये ऑर्गन रिजेक्ट हो गया है या इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो तब आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था? बिकॉज एक समस्या से जैसे तैसे उभरे थे एंड देन दूसरी बार सेम समस्या आके खड़ी हो गई थी दरवाजे पर।
1: अच्छा दूसरी बार जब समस्या आई डॉक्टर साहब तो सबसे बड़ा शौक हम लोगों के लिए क्या था कि फादर 92 में रिटायर हो चुके थे और 93 में सेकंड ट्रांसप्लांट मतलब 93 में भैया का किडनी फेल हुआ तो फर्स्ट ट्रांसप्लांट का तो रिएम्बर्समेंट हुआ गवर्नमेंट से हो गया था और ट्रांसप्लांट के समय जो रिएम्बर्समेंट की बात थी उस समय जो हॉस्पिटल से रिकॉग्नाइज थे एमपी गवर्नमेंट के लिए वो उन लोगों ने जसलोक हॉस्पिटल और बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे को किया था
0: जी।
1: इंदौर का जो चोईतराम हॉस्पिटल था उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था रिएम्बर्समेंट के लिए। तो मेरे पिताजी ने काफी लेटर वगैरह लिख कर विधानसभा में भी ये क्वेश्चन उठा था कि क्यों ना चोईतराम हॉस्पिटल में ही जब ये सब चीजें अवेलेबल है और तो फिर मतलब बॉम्बे जाना और बॉम्बे का खर्चा प्लस ट्रांसप्लांट का खर्चा ये दोनों डबल डबल खर्चों की बात एक पेशेंट को फेस करना पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को फेस करना ये बहुत बड़ा एक आर्थिक
0: एक संकट था।
1: हाँ बहुत बड़ा एक आर्थिक संकट था। सेकंड ट्रांसप्लांट के समय तो मतलब ऐसा हो गया था कि फादर जॉब में थे नहीं फादर रिटायर हो चुके थे और हम लोग जस्ट जॉब में आ ही थे जॉब में आए थे जहाँ पर ऐसी कोई उसकी व्यवस्था थी नहीं रिएम्बर्समेंट की। फिर भी हम लोगों ने कैसे भी करके उसको मैनेज किया और ट्रांसप्लांट करवाया।
0: उस जमाने में करीब कितना खर्चा आया था आपको ट्रांसप्लांट का? दोनों के बारे में जानना चाहूंगा 88 वाले ट्रांसप्लांट और 93 वाले दोनों ट्रांसप्लांट के।
1: 88 का जो ट्रांसप्लांट हुआ था उसमें तकरीबन 1 लाख के लगभग खर्चा आया था और जो 93 में ट्रांसप्लांट हुआ था उसमें तकरीबन 1.5 लाख के लगभग खर्चा आया था।
0: देखिए 1.5 लाख और 1 लाख उस जमाने में कितनी ट्रांसप्लांट का खर्चा आया था और आज यही सेम सर्जरी का खर्चा लगभग 7-8 लाख हो गया है।
1: इतना समय जबकि उस समय किडनी दोनों ही हमारे घर की थी उस समय किडनी की खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा होती थी।
0: तो सर आपने किडनी खरीद फरोख्त के बारे में बात करी तो उस जमाने में तो कोई कानून भी नहीं था तो ये कोई क्राइम की कैटेगरी में भी नहीं आता था तो उस टाइम पर
1: कानून भी नहीं था।
0: उस टाइम पर फिर आपने कैसे ये डिसाइड किया कि हम इस ऑप्शन के लिए ना जाके और ये ऑप्शन ट्राई करेंगे कि घर में से ही किसी को देंगे क्योंकि लोगों को हमेशा डर रहता है? तो जी
1: उस ऑप्शन के बारे में हम लोगों ने इसलिए ज्यादा सोचा नहीं खरीद फरोख्त के बारे में इसलिए नहीं सोचा क्योंकि उसमें जो सक्सेस वाली बात थी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो सक्सेस वाली बात थी उसमें डॉक्टरों का कहना था कि अगर रिलेटिव अगर डोनेट करता है तो उसमें सक्सेस रेट ज्यादा है उस समय के डाटा के हिसाब से और अगर किसी डोनर से आप लेते हो तो सक्सेस रेट कम रहता है। तो डॉक्टरों का सजेशन यही रहता था कि अगर रिलेटिव की किडनी मिल जाए तो दैट विल बी गुड मैच।
0: ठीक है
1: इस कारण हम लोगों ने खरीद मतलब किडनी खरीदने की कभी कोशिश नहीं करी जबकि उस समय चेन्नई वगैरह में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स थे जिसमें डोनर की लिस्ट रहती थी, ग्रुप वाइज ब्लड ग्रुप वाइज डोनर की लिस्ट रहती थी। आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए, इवन उनका रेट भी फिक्स रहता था, आप उनको पैसे दीजिए, आप और किडनी ट्रांसप्लांट करवाइए, इस तरह की व्यवस्था उस समय रहती थी। कोई दूसरा और का कानून उस समय जैसा कि आपने बताया एग्जिस्ट ही नहीं करता था।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस अंतराल के बाद आकर अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे।
2: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
3: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही फ्लैश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे इंदौर के रहने वाले जो कि आजकल रायपुर में रह रहे हैं विवेक तिवारी जी से। इन्होंने 1993 में अपने भाई को एक किडनी डोनेट करके उनकी जान बचाई थी और ये उनके भाई का सेकेंड ट्रांसप्लांट था। विवेक जी, हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कानून के ऊपर और ये किडनी की खरीद फरोख्त के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 1994 में हमारे देश में कानून आया था और उस कानून में सबसे पहली बात यही कही गई थी कि किडनी बेचना और खरीदना अब दोनों ही कानूनन जुर्म है और ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए और नहीं करने देगी सरकार। तो आपके केस में तो आपने बता दिया कि उस टाइम पर कोई कानून नहीं था तो सब कुछ खुलेआम ये सब चीजें होती थी। तो ये बताइए कि कई बार होता है कि जैसे आपने बताया कि डॉक्टर ने बताया था कि सबसे अच्छा मैच फैमिली में से अगर कोई डोनेट कर दे तो उनका ही होता है, अदरवाइज बाहर से जो किडनी लेंगे आप उसके रिजेक्शन ज्यादा होते हैं, उसकी सक्सेस रेट नहीं होती। लेकिन जो आपका फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ वो 4 साल में फेल हो गया, तो ये बात तो आपके सामने मतलब गलत हो गई होगी कि सक्सेस रेट इसमें भी नहीं था क्योंकि फैमिली के ऑर्गन मिला था तब भी सक्सेस इतना नहीं हो पाया। एंड देन सेकंड टाइम में जब फैमिली के ही देने की बात करी तब तो आप ये ऑप्शन इजीली कंसीडर कर सकते थे यही आर्ग्यू करके। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत सारे डर भी रहते हैं अपनी चीज को लेके कि हमारी डोनेट करने के बाद खुद की लाइफ का क्या होगा, हम कैसे जिएंगे। और उस टाइम पर इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि एक किडनी पर हम आराम से निकाल सकते हैं अपनी पूरी लाइफ। तो इन सब चीजों को आपने कैसे मैनेज किया उस टाइम पर, आपने और आपकी फैमिली ने?
2: इसके बारे में मैंने अपने पिताजी से भी बात करी जो कि उस समय ऑलरेडी किडनी डोनेट कर चुके थे। भैया को उनसे बात करी कि आपको क्या हेल्थ इश्यूज आए, तो मेरे पिताजी ने यही बोला कि मेरे को कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आए। उन्होंने मेरे को कभी कोई फोर्स भी नहीं किया कि तुमको किडनी देना पड़ेगा, तुम्हारी विलिंगनेस है, अगर तुम देना चाहो तो ठीक है, नहीं देना चाहो तो कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। इस तरह की बात हुई पिताजी से और पिताजी ने ही मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज नहीं आता है किडनी डोनेशन के बाद में, आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। और मैं उनको शिक्षा भी था, वो सब चीजें नॉर्मल जिंदगी ही जी रहे थे। और तो मेरे को मैं बोला कि अगर इस एज में पिताजी की एज उस समय करीब करीब 55-56 ईयर की थी जब उन्होंने किडनी डोनेट करी।
1: ओके हम आपसे एक सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि आज के जमाने में इतनी जागरूकता होने के बाद भी, आप उस जमाने से तो बहुत ज्यादा जागरूकता बढ़ गई है, बट स्टिल आज भी ये लोग बिलीव करते हैं कि अगर हमने एक किडनी दे दी तो हमारा क्या होगा, हमें कोई हेल्थ इश्यू फेस करना पड़ सकता है। तो जब आपके सामने तो लाइव एग्जांपल था, लेकिन आपके जरिए हम उन लोगों को ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन है तो आप जरूर इसे हाँ कहें और आप किसी की जान बचा सकते हैं, अपने परिवार के सदस्य की। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे दूर के रिश्तेदार होते हैं और जो फैमिली वाले होते हैं वो भी हमें हमेशा नेगेटिव ही बताते हैं इन सब चीजों के बारे में, बट आपके केस में ऐसा नहीं था क्योंकि आपके सामने लाइव एग्जांपल था। एक बार पापा ऑलरेडी डोनेट कर चुके थे और उन्होंने कभी कोई कुछ फेस नहीं किया। 1993 के बाद आपके भाई, अब उनकी सिचुएशन कैसी है?
2: एक्चुअली 93 के बाद भैया का स्वास्थ्य अगर सब ठीक चल रहा था और भैया यूनिवर्सिटी में उस समय तक वो अपनी हायर स्टडीज कर चुके थे। आफ्टर फर्स्ट ट्रांसप्लांट उन्होंने हायर स्टडीज कंप्यूटर में करी थी क्योंकि उस समय कंप्यूटर का सेक्टर बूम चल रहा था। तो फिर उन्होंने बाद में अपना स्किल बढ़ाया और कंप्यूटर्स में वो प्रोफेसर बन गए और यूनिवर्सिटी में काम करना चालू कर दिए थे। पहले रीडर के पोस्ट में उनका अपॉइंट हुआ था, फिर आज की डेट में वो प्रोफेसर है। और 93 से लेके 2006-07 तक उनका जो मैंने किडनी उनको दी थी वो वर्किंग रही और फिर उसके बाद वो किडनी फिर वापस फेल हो गई 2007 में। उसके बाद से भैया वापस डायलिसिस में है, आज की डेट में अभी भी अलाइव है और हालांकि बहुत ज्यादा वीक है, अभी चल फिर भी नहीं पाते थे अच्छे से, व्हील चेयर में ही कॉलेज भी जाते हैं और वापस उनका डायलिसिस आज की डेट में चालू है। हफ्ते में 3 दिन उनका डायलिसिस होता है तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज तो उनके पास अब है, अब जाके है, पिछले 3-4 साल से काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज वो फेस कर रहे हैं और हम लोग उनको पूरा सपोर्ट करते रहते हैं। मतलब सपोर्ट क्या करते रहते हैं, साथ में ही वहाँ पे मेरी सिस्टर रहती है, सिस्टर काफी टेक केयर करती है उनसे इंदौर में, और जरूरत पड़ने पे मैं भी जाते रहता हूँ इंदौर। फ्रिक्वेंट विजिट मेरा इंदौर रहता है, रायपुर से इंदौर मेरा फ्रिक्वेंट विजिट रहता है भैया के पास।
1: तो ये चार पांच साल से, मतलब तीन चार साल से ये इशू फेस हो रहा है, अदरवाइज 1993 के बाद 2020 तक बिल्कुल, 2019 तक बिल्कुल ठीक थे।
2: जी जी, मतलब डायलिसिस तो 2007-08 से चालू हो गया था उनका।
1: अच्छा।
2: वापस लेकिन उसके बाद भी वो खुद अपना, मतलब उनका खुद अपना विल पावर उनका इतना स्ट्रांग है कि वो खुद अपनी कार चला के डायलिसिस करवाने जाते थे, और डायलिसिस करवा के वापस अकेले ही अपना घर में आ जाते थे, तो उसमें खुद अपना सेल्फ मैनेज कर लेते थे। लेकिन अभी तीन चार साल से वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, तो अभी उनको ड्राइवर ही लेके जाता है, और दूसरे कुछ हेल्थ सपोर्टर रखे हुए हैं हम लोग, अपॉइंट किए हुए हैं जो उनका टेक केयर करते रहते हैं, और हम लोग भी आते जाते, हम लोग भी उनकी टेक केयर पूरी तरह से करते रहते हैं।
1: अब कोई प्लान है उनके किडनी ट्रांसप्लांट का, अपने डॉक्टर से बात करी?
2: नहीं सर, अब क्या है कि उनकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, तो डॉक्टरों ने हार्ट ट्रांसप्लांट का हम लोगों ने उतना थिंक ओवर भी नहीं किया, क्योंकि हम लोग काफी वीक हो चुके हैं, तो ऐसा था ट्रांसप्लांट की कभी बात।
1: आपकी, अगर आपकी बात करें तो आप इतने साल हो गए किडनी डोनेट के हुए, कभी आपको इस वजह से कोई इश्यू फेस करना पड़ा हो, या अब आपकी हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं?
2: मैं अभी मैं एक नॉर्मल लाइफ ही जी रहा हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की हेल्थ इश्यूज मेरे साथ में किडनी को लेकर नहीं है। हाँ, एज के साथ में जो हेल्थ इश्यूज रहती है, बीपी है, बॉर्डर लाइन पे शुगर भी है, जिसका कि इलाज मैं करवा रहा हूँ, उसके मेडिसिन लेते रहता हूँ, और दूसरे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है मेरे को। इवन मैं एक हैप्पी फैमिली में रह रहा हूँ, मेरी मैरिज 98 में हुई है मेरी मैरिज।
1: मैरिज की बात करें तो एक और बात बताइए सर हमारे श्रोताओं को कि किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी डोनेशन की वजह से कभी मैरिज में कभी कोई समस्या आई, जब शादी हो रही हो, फिक्स हो रही हो, आपने ऑब्वियसली बताया होगा अपने पार्टनर को, होने वाले पार्टनर को क्या कैसा हो चुका है, तो कभी कुछ ऐसे रूढ़ीवादी सोच का सामना करना पड़ा हो?
2: नहीं सर, ऐसा सोच का सामना तो करना पड़ता, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ही डे वन से, जिस दिन से मेरी शादी की बात चल रही थी, तो डे वन से हम लोगों ने इस चीज को कभी भी छुपाया नहीं कि मैं किडनी, मतलब इस चीज को हम लोगों ने आगे रख के बोला कि भाई देखो इन्होंने किडनी डोनेट करी हुई है, आप जो भी रिश्ते आते थे तो उनसे हम सबसे पहला क्वेश्चन यही करते थे, सबसे पहले उनको यही अवेयर करवाते थे कि किडनी डोनेट कर चुका हूँ मैं। तो कुछ लोगों ने रिजेक्ट भी किया, फिर मेरी मिसेज ने जो कि डॉक्टर, जो कि अभी अर्चना तिवारी है मेरी मिसेज का नाम, वो यहाँ पर संस्कृत में अभी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी है।
1: अच्छा।
2: उन्होंने इस चीज को बड़े हेल्दी वे से एक्सेप्ट किया कि जो बंदा अपने भाई के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकता है, तो अपनी फैमिली के लिए वो के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस पॉजिटिव सोच के साथ में उन्होंने मैरिज के लिए आगे आई, और मैरिज हुआ, और मेरे आज की डेट में दो बच्चे हैं। एक बच्चा मेरा इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में पढ़ रहा है, और मेरी बड़ी बच्ची अभी यहाँ पर रायपुर में ही बीएससी कर रही है।
1: बहुत बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतनी समझदारी का परिचय देते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी है आपके प्रति और आपके जो काम के प्रति।
2: जी,
1: आपको शुभकामनाएं देते हैं इस चीजों के लिए कि आज आप एक बहुत अच्छी हेल्थी फैमिली लाइफ जी रहे हैं। विवेक जी, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, और ब्रेक के बाद अपने शो को जारी रखेंगे और अपना शो कंक्लूड करेंगे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं छोटे से अंतराल के बाद। हम बात कर रहे हैं विवेक जी से और जो जिन्होंने अपने ब्रदर को अपनी एक किडनी डोनेट करी थी। विवेक जी, आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि कई लोग सोचते हैं, इवन आज के जमाने में भी सोचते हैं कि हम किडनी डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी खुद को हेल्थ इश्यूज आएंगे, या फिर अंग दान को लेकर सोच सकते हैं। हमारे समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां प्रचलित है कि अगर हमने अंग दान कर दिए तो फिर हमारे नेक्स्ट वर्क में हमें अंग नहीं मिलेंगे, या फिर हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, हम मोक्ष नहीं मिलेगा, या हमारे रिचुअल्स जो अंतिम क्रियाएं हैं वो डिले हो जाएंगी। इन सब तरह के लोगों को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे अंगदान के ऊपर?
2: अंगदान एक, जैसा कि अपनी पहले भी बात हो चुकी है, अंगदान एक महादान है और जिसमें आप डायरेक्ट किसी की लाइफ सिक्योर कर रहे हो, लाइफ बचा रहे हो। तो इसमें इस तरह की कोई मोक्ष और इस तरह की कोई चीजें आड़े नहीं आना चाहिए, और बल्कि इस चीज को बड़े हेल्दी वे से लेना चाहिए। आज की तारीख में बहुत सारे एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं कि किसी की ब्रेन डेथ हो गई है और उन्होंने अपनी पूरी बॉडी डोनेट करी है और उसमें कई लोगों की जान, कई लोगों को अंगदान मिलता है जिसमें कि आई से लेकर स्किन से लेकर किडनी से लेकर इवन हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट तक होते हैं। और तो ऐसा कोई, ऐसा कुछ कमजोर हो जाओगे या आप लाइफ में कुछ इफेक्ट आएगा, ऐसा मेरे को आज की डेट में 30 साल हो गए, 15 जून 2023 को पूरे 30 साल हो जाएंगे मेरे को किडनी डोनेट किए हुए। 15 जून,
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी ये बताना चाहूंगा, जैसे विवेक जी ने बताया कि एक इंसान अपने अंगदान के बाद करीब 9 लोगों की और 50 से ऊपर लोगों की जिंदगियां बेहतर बना सकता है, 9 लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आपके कारण आपने अपने अपनी जिंदगी तो जी ली, लेकिन मरने के बाद क्या? तो मरने के बाद जब आपका परिवार देखता है कि आपके कारण कितने लोगों की जिंदगियां रोशन हो गई, तो एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आती है और बहुत ही अच्छी बात है ये। और ये काम गलत हो ही नहीं सकता जब आप इतने परिवारों की जान बचा रहे हैं। तो मैं भी आपसे यही अपील करना चाहूंगा, जैसा कि विवेक जी ने कहा कि हर इंसान को अपने अंगदान करने का फैसला जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो अंगदान हो भी पाए या नहीं, बट ये तो भगवान की मर्जी है। बट आप अपनी तरफ से अपना पार्ट जरूर प्ले करें, अपना किरदार जरूर निभाएं अंगदान के लिए। हाँ कहें, अपनी फैमिली अपने दोस्तों को इस बारे में जागरूक करें कि हाँ आपके हाँ से कितने सारे लोगों की जिंदगी बच सकती है। विवेक जी, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे शो में आने के लिए, हमें इतना समय देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताने के लिए। हम आपको भी शुभकामनाएं देते कि आप इसी तरह से स्वस्थ रहें, आपका परिवार खुश रहे और जो आपके ब्रदर हैं उनकी भी हेल्थ में सुधार आए ताकि वो अपनी आगे की लाइफ अच्छे से निकाल पाए। जी धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
4: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
4: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस न करे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारम्भ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरों मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ SOCHM और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना, क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए। तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, आखिर जान का है सवाल।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: तो बिजली बचाओ, देश बनाओ।
1: इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मना ही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट पीड़ी दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान न करें न करने दें।
2: यार इतनी गर्मी हो

0: एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
1: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
0: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
1: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
0: क्या वो पापा जी मान गए?
1: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना।

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशीर्वाद रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना, क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट पार्ट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए, गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब,
0: हाँ,
1: एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए, फिर
1: ओ यस यस, हां सर,
0: तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, अगर जान गए तो।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मना ही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट पीड़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें।
1: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
2: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
2: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
1: क्या वो पापा जी मान गए?
2: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका।

ये तो हाँ सारा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कन्वेशी हाजिर हुई कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक दर्शो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सारे दी शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी कन्ने तो हाँ सारे ठीक ठाक होने न कन्ने अपना जेड़ा काम कार है से जरूर कराते होने न काम कार करने अपना जेड़ा रेडियो सेट है सभी जरूर तो हाँ ऑन करी ले आना है क्योंकि ऑन करके ताई तो हाँ जेड़ा रेडियो गुंजन दे जितने भी प्यारे प्यारे कार्यक्रम मन तिना जो समय अनुसार सुनी सकते कने इस कार्यक्रम का जेड़ा समय है से तो हाँ तक रहता है 2 ते 3 बजे तक तो जरूर इस सफर कन्ने तो हाँ जुड़ी होने न कने जुड़ने वास्ते जड़ाहां दा नंबर है सभी तुहां तक पहुँचाई दे न क्योंकि नंबर तुहां तक पहुँचाऊंगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स्ट मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज करी सकदे। नंबर है 701-8117091 ते इस नंबर पर

तो हाँ कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा, कन्या हाँ कर दिन पहले अपने कार्यक्रम का आगाज इस प्यारे दे गीत करने। तो हाँ फिर ही मिला इस गीते दे बाद, क्योंकि इस गीते बाद जिहड़ा से तुहां कन्ने गलबात करनी है, कन्ने जिहड़ा तुहां दियां फरमाइशां ने सभी जरूर तुहां तक पहुँचानियां ने।

0: ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, इसी कन्ने तो हाँ सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश, कन्ने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने, कन्ने इसी कन्ने इस कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तो हाँ तक रेंदे 2 से 3 बजे तक, कन्ने तो हाँ सारे फेसबुक लाइव कन्ने भी जितने भी लिसनर हैं से दिखा दे भी होने न, कन्ने जितने भी श्रोता हैं जेड़ा फेसबुक च दिखा दे तिना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है। तशो तो जेड़ा विचार हैं से हाँ जरूर तो हाँ तक ले करी होंदे न, तो चाहे जहाँ चाहे जलू हाँ बनाते न तो कुथी ना कुथी तीस जिहड़ा चाय दा स्वाद है से किस प्रकार होंदा है, अगर अहां पत्ती अच्छे ने पांदे न या चीनी स्वाद अनुसार पांदे न, कने दूध स्वाद अनुसार या चाय दा रंग फेंट करने वास्ते अहां पांदे न, तां से चाय दा जिहड़ा स्वाद है या संतुलन है से अच्छा लगता है। तो तिन्ने अहां दे जिहड़ा रिश्ते न तिन्हां च प्यार कने समझ कने सम्मान होना बड़ा ज़्यादा जरूरी है, कने अहां दे जेड़ा श्रोता न सभी जरूर अहां जो कॉल पर कॉल करा देन, कने कॉल जरूर जेड़े से करी सकते न, कने कुछ लाइना थियां से जरूर अहां तुहां तक पहुँचाइया न, कने अज कने दिने दी गल करिए तो अज कना जेड़ा दिन है 16 जुलाई 2026 दा ये दिन, कने अगले जेड़ा श्रोता न कर दें तिना कहने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च, ठीक ठाक है न?
1: हां जी ठीक ठाक। तुहां
0: जी? अहां भी ठीक ठाक हैं जी। तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहंदा ना के है जी?
1: हां बोला दे कांगड़े दे।
0: जी कुथु ते बोला दे?
1: कांगड़े दे।
0: जी कांगड़े ते बोला दे, क्या हाल चाल है जी कांगड़े आले अंदे?
1: बड़ी गर्मी।
0: बड़ी गर्मी
1: तो बोला कि बड़ी भारी
0: जी, गर्मी आला एहसास होदा ना जी?
1: हां जी
0: जी। ता स्वर्णा जी और नोईता जी?
1: नोईता जी ता क्या बरखा ने होवाई ना हुन
0: जी? अच्छा बरखा दी जरूरत है ना जी?
1: और 10-15 दिन होइए बरे थुदा
0: जी। जी
1: वहाँ पर है हवाली बरखा
0: जी? यहाँ दी साइड भी नहीं होती बरखा।
1: अच्छा
0: जी। तस्वर्णा जी आज तुहा कुंदिया गीत सुनना पसंद करके?
1: गीत सुना हाँ। ए शेरा वाली माता मेरा वाली माता दसो हाडे दिल विच की।
0: जी जरूर है भजन तुहा तक पहुँचान दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: थैंक यू
0: जी। तो श्रोताओं तो सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने, इसी कन्ने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न, कने तुह जो ले करी चलते न अगली फरमाइश दी ओर, क्योंकि गलबात कन्ने गीत संगीत भी जरूरी है तुह तक पहुँचाना, तो जरूर अगली जेड़ा फरमाइश है या अगला जेड़ा गीत है से तुह तक पहुँचा देना, तो हसारे भी इस गीत जो इंजॉय करा।

0: ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो श्रोताओं तुह सारे ही सुनिया ये गीत ये फरमाइश। इसी गीत कन्ने अगले जेड़ा श्रोता ने सभी जरूर अहां जो कॉल करा दे न तिना दी कॉल भी जरूर जेड़ा से अहां अटेंड करनी है। कन्ने तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाह कन्ने जुड़ी सकते कन्ने अहां कन्ने गलबात जेड़ा से जरूर करी सकते। तो श्रोताओं अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते शशि जी। नमस्ते
0: नमस्ते जी। स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
1: हां जी
0: ठीक ठाक है न?
1: हां जी ठीक ठाक
0: जी। तुहां अपना परिचय जरूर दे दिया कुतु दे रहने वाले जी तुहां?
1: असा टिकरी ते बोला दे
0: जी। टिकरी ते बोला दे
1: टिकरी टिकरी
0: टिकरी।
1: हां जी
0: जी। करे ना क्या जी तुहां दा
1: ना? मेरा विमला देवी
0: जी। ता विमला जी क्या काम कार तुहां छेड़िया? क्या मौसम है तुहंदी साइड?
1: हम बैठे हो पखे ही हवा च काम है इस वक्त कुछ नहीं है।
0: जी कोई काम कार नहीं है।
1: हां जी हां जी।
0: रेडियो हाँ। सुना देना जी तुहां?
1: हां जी रेडियो सुना दे। हां
0: जी। ता रेडियो च क्या खास गल तुहां जो लगदी या मन किस प्रकार लग्या रहंदा तुहंदा?
1: आयो इस वक्त गाने दा इंतजार हुंदा
0: जी।
1: कल दिए 2 बजदे न और गाने सुनदे रहा तुहाड़ियां
0: जी। हाँ। जी
1: हां जी हां जी।
0: हां गाने ही सुनदे न कि गलबात भी सुनदे न? मेरी
1: गलबात भी सुनदे। गलबात भी सुनदे रहंदे हां सब कुछ सुनदे
0: जी। तक दी लगदी मेरी गलबात
1: बहुत अच्छी
0: जी। धन्यवाद जी इतना ज्यादा
1: धन्यवाद
0: दिंदे न जी। जी तो आज यहाँ जेड़ा खास दिन बना देन सभी जरूर तुहां तक पहुंचाई दे ना जी, क्योंकि हर दिन दी अपनी अपनी खासियत होंदी ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी। तो आज यहाँ विश्व सर्प दिवस बना देन ना जी।
1: अच्छा
0: कने इसी कने आज चीड़ नु संग्रांद भी है ना जी?
1: हां जी हां जी संग्रांद भी है
0: जी जी।
1: हां जी
0: जी। तो थोड़ी दी तिहा संग्रांदी बनाने दी खासियत जरूर दसी दिया कि कई बनाते यहाँ ते है यो क्या बनाने दा मकसद है ते है संग्रांदी बनाने दा?
1: ते चीड़ नो ऐसा ग्रांत बना यो था अन बोलने चीड़ नो फूकने ना
0: जी जी।
1: तब फिर धंधने दे ते पूजी ने चीड़ नो फूकी ने
0: जी
1: कुछ तो आर बनाई लेना
0: जी। मतलब मिठिया रोटियां बनाई लेने बबरू बनाई
1: लेने? हां जी हां जी हां जो मर्जी बना पूरियां बना मिठिया रोटियां बना बबरू बना
0: जी। तो तुहां भी बनांदे है संग्रांदी जो?
1: हां भी बनाई लेंदे। हां जी।
0: तो तुहां क्या क्या बने आज?
1: हां बस ये बनाया हां पूरियां बनाईया ना
0: जी। ता मिंजे लगा ता मिंजे आना पोणा है।
1: हां जी हां जी
0: हां जी। विमला जी आज तुहां कुंदिया गीत सुनना पसंद करके आज कुंदिया गीत सुनना है जी?
1: हां जी हां जी हां जी हां जी। क्या नाम तो नौ गाना चलिया मेरी ये बलोचड़िया है
0: जी। मेरी ये बलोचड़िया
1: बलोचड़िया
0: जी। जरूर आहा कोशिश कर देन ये गीत तुहां तक पहुंचान देन फरमाइश जी।
1: हां जी
0: जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा। संग्रांदी दियां भी बड़ियां सारियां मुबारकां जी।
1: हां जी हां जी तुहां यो भी
0: जी।
1: हां जी
0: जी। ए है तुहां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तशो तो हर दिन दी अपनी खासियत होंदी कने जेड़ा हंदी संस्कृति है जेड़ा हंदे रवाज हन से कुती ना कुती हां जो अपनी संस्कृति कने जोड़ी करी रखदे न अगर हां समझ देन ताई तशो तो आज जहाँ जेड़ा खास दिवस बना देन सभी तुहां तक पहुँचाई थे कि हर साल जेड़े से 16 जुलाई जो वहाँ विश्व सर्प दिवस जेड़े से बना देन अंधविश्वास कनडर जो कम करने वास्ते जेड़े से कई बार होंदा ना कि आजकल वैसे भी बरसात का मौसम लग गया था सांप का डर हर कुसी होंदा तो थोड़ा दे अपना जेड़ा ख्याल है से रखने दी जरूरत है। इसी कने अहां भी तुहंदा ख्याल रखना है कने तुहां जो अगली अगली जेड़ा फरमाइश है तीसा दी ओर भी ले करी जाना है। तो चलते न अगली फरमाइश की ओर तुह तक पहुँचाते न अगली फरमाइश। तुह सारे भी इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, क्योंकि रेडियो गुंजन धर्मशाला कि जुड़ गए ताई तो तुह अपन जेड़ा प्यारिया प्यारिया फरमाइशां तिना जो सुनी सकते। तो जरूर चलते न सुनते न अगली फरमाइश।

ये तो हाँ सारी अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने कन्ने आज हाँ जेड़ा गल बात करा देन कार्यक्रम च से करा देन विश्व सर्प दिवस दे बारे च। मैं पहले भी कुछ लाइना जेड़ा ने से तुह तक पहुँचाइया थी पर कई बार होंगे ना कि जेड़ा मुख्य बिंदु है या उद्देश्य क्या बनाने के उद्देश्य न अंधविश्वास और जेड़ा डर है कम करना समाज जितने भी साफ हैं तिना लेकर यहाँ कई बार अपने अंदर गलत धारणा जड़े से पाली लेंदे न या डर जड़े से यहाँ जो लगता है पर तिदे प्रति जागरूक होना भी जरूरी है। अधिकांश जड़े से साफ जड़न से बिना वजह नुकसान जड़े से यहाँ जो नहीं पहुँचाते न अगर अहाँ तिना कन्ने छेड़ देन या तिना जो कई बार गलतियाँ ने अहाँ दा हाथ लगी आंदा है या पैर रुखोई आंदा है तो से तिना जो पता नहीं होंदा कि अहाँ पर कुछ दा पैर रुखोया या क्या होया है से तो वैसे भी कुछ भी नहीं करते पर अहाँ दा जेड़ा दिले दा बैम से अहाँ जो कुथी ना कुथी नुकसान जेड़ा है से जरूर पहुँचाइंदा। तो इसी कन्ने अगर अहाँ सांफा दी गल करिए तो खेतां च या जंगलां च जेड़ा चूहे न कीड़े मकोड़े न अन्य जेड़ा छोटे जीव हैं तिना दी आबादी जो नियंत्रण करने वास्ते जेड़ा से सांफा दा बड़ा ज़्यादा महत्व है कने जेड़ा अहां दी फसल है उस जो बचाई करी रखते हैं ना तो ज़रूर। वैसे तो डर हर कुसी जो होंदा पर कई बार डर ही अहां जो नुकसान जेड़ा से ज़्यादा पहुँचाइंदा। तो श्रोताओं इसी कन्ने अहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है कने तुहां जो अगली फरमाइश दी ओर लेकर चलना है सुन देन इस प्यारी दी या फरमाइशा जो प्यारी दे भजने जो

कानवी दशमलव 2 MHz पर यह दोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शोता दोहा सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश। इस गीत की फरमाइश अह तक पहुँची हुए पर साहब के माध्यम ने कनतीना दा ना वे सुनील जी कने से रहने वाले न कोठियाँ जलोर ते तो जरूर तिना तक अहा ये गीत फरमाइश पहुँचाई कने तोहा सारिया भी इंजॉय की थी कने तो सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कने जुड़ी सकते कने अहा कने गल बात जिड़े से जरूर करी सकते। तो श्रोताओ इसी गल बात कने अहा फिरी ते अगे बढ़ते न क्योंकि जिड़ा गीत संगीत है ना से बड़ा ही ज़्यादा जरूरी है कने अहा दे जिड़ा श्रोता न जिड़ा फेसबुक लाइव लिसनर दिखा दे थे तिना भी यहाँ तक एक फरमाइश पहुँचाई हुए सभी फरमाइश यहाँ तिना तक पहुँचा दे न से रहने वाले न खनियारा ते कने तिना दा नाव है चरण दास जी तो जरूर तिना तक कहाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचा दे न तो सारे भी इंजॉय करा।

अहमोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दिन अपने रेडियो तो शशि कने इसी कने तो हाँ सारे ही सुनिया ही प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश कने फिर ते हाँ वापिस अपनी गलबात उपर आई हो न कने कार्यक्रम का जिड़ा समय है सभी अपनी रफ्तार लेकर चले है कने

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तई श्रोता तो हाँ सारे सुनिया ये गीत ये फरमाइश कने कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है सभी हुण अपनी रफ्तार लेकर ही चल रहा है क्योंकि समय जेड़ा ऐसे है तो हाँ सारे जो ये पता है कि कुसी वास्ते नहीं रुकता। समय दे अनुसार चलना हर कुसी वास्ते जरूरी है। समय जेड़ा ऐसे हाँ जो हर सबक जड़े से देख ही जाता है पर हाँ समय ते क्या सबक जड़े से लेंदे न या क्या सीख हाँ समय ते लेंदे न से यहाँ पर निर्भर करते है। हर दिन हाँ कुछ न कुछ नया सीखते न अच्छे अच्छे अनुभव जड़े से अपनी जिंदगी च लेंदे न पर सफलता पाने वास्ते अनुभव लेना भी जरूरी है न क्योंकि अनुभव लेंगे ताई ता हाँ अपनी जिंदगी दे सफर जो अगे बढ़ाई सकते कने अपने जेड़ा काम मन तिना जो पूरा करी सकते। इसी कने हाँ अपने कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है सभी थोड़ा दे अगे बढ़ाना है कने तो हाँ सारे ते अनुमति भी लेनी है क्योंकि समय जेड़ा है सिर्फ 2 मिनटा न तो इसी कने तो हाँ सारे ते अनुमति भी लेंदे न कने लास्ट फरमाइश भी तो हाँ तक पहुँचाते न सुनते नहीं सब प्यारी दिया फरमाइशा जो प्यारे दे गीते जे कने तो सारे ही अपनी रेडियो दो शशि जुदिया अनुमति।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना, क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट पाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब,
0: हाँ,
1: एक सेल्फी।
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए, फिर
1: ओ यस यस, हाँ सर।
0: तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, आखिर जान का है सवाल।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मना ही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट पीड़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान न करें न करने दें।
1: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
2: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
2: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
3: कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका, अब तो खुश हो ना।
4: रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मुझे पढ़ना है, मुझे उड़ना है।

0: भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह पिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी।
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए। तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल। भैया अगर जान का है सवाल।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है। यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: जवानों, जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटल फील्ड है, तो बिजली बचाओ देश बनाओ।
1: इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मना ही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों छेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट पीड़ी दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान न करें न करने दें।
2: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
3: यार तुम्हें तो पता है ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
2: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
3: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
2: क्या वो पापा जी मान गए?
3: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून करो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर आऊँ। सचिन कपूर हाजिर हो चुका हूँ सभी रह रेडियो सेट में रेडी गुंजन धर्मशाला मंच। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन हाँ सभी होने वाले रह सभी श्रोतागण रहा। तो कैसे इन तो सब उम्मीद भी आ और समझ भी सकता कि सब खरे बुढ़े ने और समझी ता सकता शो खजो कि खरे बुढ़े कि सब बहुत ज़रूरी है लाइफ में खुश रहना कि सब बहुत ज़रूरी है लाइफ में शो यूँ भी सब भी वीन देखिए सो थोड़ी कभी स्ट्रेस भरी जॉब किया इन्हें स्ट्रेस भरा तनाव किया सो रंदा सब भी वास्ते है ना। ता स्ट्रेस फ्री करने वास्ते किया सो अपू मंच खुश रहो करा कसी न कसी गल अंदर किया सो तंदुरुस्त रहो करा कसी न कसी गल अंदर किया सो खुशी तो अपने रे कोशिश किए श्रोता हूँ सो जरूर करो करा है ना जी। ता इंसान किया सो खुश रह सकता हा नहीं तो यहाँ सब जानते किया है सब के ना सो अपनी अपनी लाइफ में हर किसी को अपनी अपनी लेवल रही क्या ना सो दिक्कत बुंदीन परेशानी बुंदीन श्रोता है ना। और यह सब अपनी अपनी परेशानी थो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी बुंदीन कुछ एरोर की दिक्कत है कैंसो भी बुंदीन तो यह सब जूझ देन है ना। तो फिर तकर जहने मौका मिला श्रोतों तहने हंसी लियो कर और आऊँ तुसू आ गल और दसना चाहूँ हाँ कि हंसने थो ज़्यादा किया इतों मोटे कोई भी एक्सरसाइज किया सो नहीं हाँ श्रोतों हाँ वाकई में हंसने तो बड़े एक्सरसाइज कोई भी नहीं इस दुनिया अगर तो है हंसू कर देन मुस्कुराओ कर देन तो है मतलब तुंदा स्वास्थ्य की सो बिल्कुल ठीक है तुंदा स्वास्थ्य की सो बिल्कुल बढ़िया है। तो चलिए पहले धर्मशाला मौसम के सोआ है जानी लेंदे हिन श्रोतों इस समय अगर हम गल करूँ तो लगभग लगभग 3 डिग्री सेल्सियस रे आसपास के सो मौसम रहो है और न मेरी गल करिए श्रोतों तो न मैं इस समय किया 80% रे या और 80% किया सोना में इस समय। तो चलिए जी है या धर्मशाला रा मौसम जो खूबसूरत था सुहाना है तो इस मौसम में श्रोता हूँ प्यारे दे गीत तो बनता ही बनता है ना और इस प्यारे दे गीता जो है तुसु तक के सो जरूर पहुँचन दे हिन आगाज कर लेंदे हिन कार्यक्रम रा और तो सब श्रोतक सो कॉल कर सकते हैं सो 7081889 पर नंबर अक मुके फिर शेयर करनो 7081889 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी जो तुसु हो गया सो शेयर करनी साझा करनी हिन पर आइया जानकारी तो पहले आगाज किया सो इस कार्यक्रम रहा है ज़रूर करे लेंदे हिन बने रहे तो ये सब रेडियो गुंजन रे गूंज सो के

0: मेरे जो जाना ज़रूर हो, बहुत ही प्यारे दया गीत के सो तो है सभी हूँ वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच। आऊँ सचिन कपूर हा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर के आ सो हाजिर हुआ हा तुंदे सभी रे रेडियो सेट मा। तो तुम सब श्रोतास हो गए कि सो अस वो कॉल कर सकते हैं अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं शो तो और अपने क्षेत्र जानकारी किया सो होगे सांझा कर सकते हैं जानकारी सांझा करने वास्ते और होगे बढ़ने वास्ते नंबर आऊँ शेयर करी नो 708-8-8-709 पर तो है कॉल कर सकते हैं शो तो। तो चलिए जनाब हिंदी अपनी गप्पा मंच अक मौके फिर बड़ा बड़ा स्वागत है सभी होने वाले रा सभी श्रोतागण रा। तो है फेसबुक रे माध्यम तो भी गया सो बिल्कुल तू हो गए लाइव चली दिन शो तो इतनी कोई दोहराए नहीं आ क्या है लाइव नहीं दे है बिल्कुल लाइव चली दे ले। बड़ा बड़ा स्वागत है मोटा मोटा स्वागत है अक मौके फिर सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। हाँ सचिन कपूर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा मंच तुंदा सभी रहा स्वागत करनो है तहे दिल थो। ता चलिए श्रोताओं कार्यक्रम जो हागो बढ़न दिन बहुत सारे फेसबुक वे जरिए भी असू आजकल के ऐसो फरमाइश है इच्छू कर दिन और है कोशिश करूँ कर दिन कि तिन्या फरमाइश जो किया सो है जल्द थो जल्द पूरी कर है ना। और सोगी कुछ एक सुझाव के न सो भी असू इच्छू कर दें तो तिन्या सुझाव पर भी है जरूर कम कर सकते हैं। अक और गल अपने फेसबुक रे माध्यम थो अपने श्रोता जो आऊँ दसना चाहता कि तुहे बिल्कुल अपने जस ग्रां थो तुहे बिलोंग करते हैं जस भी विलेज थो तुहे बिलोंग करते हैं तड़ी अरी क्या खूबसूरती है कति वास्ते सो विलेज किया सो तह विलेज रा ना रख रखू रा है ना क्या तति अंदर बड़ी यूनिकनेस आ एक गल्ला तो है ज़रूर असू कमेंट रे माध्यम थो किया सो दसी सकते हैं ताकि तुंदी विलेज रे बारे तुंदे ग्रां रे बारे किया सो है रेडियो मंच किया सो ज़रूर दसन रेडियो मंच किया सो ज़रूर साझा करन है ना जो भी तुंदा ग्रां बोला तस ग्रां रा ना है रेडियो मंच जरूर दसना। और फिलहाल कार्यक्रम जो आगू बढ़ेंदे हिन इंदे श्रोतागण अस हो गए बिल्कुल कनेक्टेड हिन पुछ दिन कौन बोलूं देन और कड़ी थो बोलूं देन नमस्ते जी
1: नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: जी क्या हाल चाल ठीक रहा सर
0: बहुत बढ़िया जी तो बोले तुंदे के हाल चाल ठीक ठाक राजी बाजी
1: हाँ जी हाँ वे सर राजी बाजी दुआएं दे सारे निकली या दिन तो बोलना वे ठीक है
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: अच्छा कुंडल गीत होना पसंद कर ले जी तो है
1: गीत सुनाए दिया तो हाँ बज ना गोरा प्यारी लाडलिए
0: गोरा प्यारी लाडलिए
1: हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी जरूर सुना ले
1: ठीक है जी बड़ा बड़ा धन्यवाद
0: धन्यवाद जनाब धन्यवाद जी धन्यवाद। चलिए श्रोताओं कार्यक्रम जो आगू बढ़ाते हैं और कुछ एक जानकारी होगी कि सो तुसु जो रूबरू करवाते हैं तुसु तकर के श्रोताओं ये जानकारी पहुँचाते हैं तो ऐसा बन रहे समय आर जे सचिन कपूर सो गे गूंज अपने पन रे। तो वन विभाग की श्रोताओं सो वन विभाग है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन जो बढ़ावा देने वास्ते किया सो पंजा इको टूरिज्म साइट का आवंटन किया सो करी दिता हा आवंटित इको टूरिज्म साइट पर किया सो 30-40 टेंट लगाने रे अनुमति किया सो भोने हा एक कैंपेनिंग इस कैंपेनिंग में किया श्रोताओं सो मोटर बाइकिंग भूने हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स भूना हाँ फूड स्टॉल भूना है फूड बैन जैसी गतिविधियां क्या न सो संचालित इड़ी भूनेहीन स्थानीय पारंपरिक व्यंजना व स्टॉल किया सो इड़ी लगना हाँ नेचर हट रहे नाथों किया सो विकसित ये भूना हा श्रोतों विभाग रहे मानना है कि इस परियोजना थो गाइड हॉस्पिटलिटी और स्थानीय उत्पादों वे बिक्री जिया क्षेत्र में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार रे अवसर किया सो मोलने हैं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो किया सो मजबूती भी मोलने हाँ जी बिल्कुल जहाँ प्रत्यक्ष तरीके होगी वह जहाँ अप्रत्यक्ष तरीके होगी रोजगार रे अवसर किया सो मोलना हाँ विभाग रह किया सो ये मनना हाँ तब वन विभाग किया सो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन जो बढ़ावा देने वास्ते पंजाब इको टूरिज्म साइट का आवंटन किया सो करी दिता हा श्रोतों आवंटित इको टूरिज्म साइट पर तो है 30-40 टेंट लगाने भी अनुमति गया सो भोने हाँ कैंपेनिंग भोने हाँ ट्रैकिंग भोने हाँ मोटर बाइकिंग भोने हाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स मोलना हाँ फूड स्टॉल और फूड बैंड जैसी गतिविधियाँ संचालित कैन सो भोने हैं। इसी प्रकार होगी जानकारी रा पिटारा गया श्रोतों सो यहीं चले रहना तो सब इस समय बन रहे ना आरजे सचिन कपूर सो गए और इन द अगले श्रोता भी अस हो गए बिल्कुल कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
2: नमस्ते सर जी।
0: माफ़ करें जी आवाज़ नहीं चू कर दी अगले श्रोता जो कर दिन कनेक्ट। नमस्ते जी।
3: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
3: आप कहाँ से बोल रहे हो?
0: माफ़ करें जी है कार्यक्रम इस समय लाइव चल रहा और तो है वेड़ी गुंजर में कॉल कर रही है।
3: अच्छा अच्छा यार नमस्कार सचिन जी।
0: हाँ जी नमस्कार जी।
3: और बिलीज बनगोटू ना बल्लू गंदा जी।
0: बनगोटू थो बल्लू दिन। अगर तुसु पता तो रेडियो गुंजर का नंबर था फिर तू है सवाल करो कि कहाँ से बोल रहे हो?
3: थोड़ा भलेखा लगे अनपढ़ मन ना से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा चलिए ठीक है जी कमाल अनपढ़ ने ना बोलनो तुसु है या ज्ञान नहीं बंदा कोई नहीं तो है मतलब तुसु ले इतना एक्सपीरियंस है लाइफ रा तुसु ले इतना मतलब तू आ है क्या बोल सकदा सुले शब्द घट पाएगा
3: ओ तू ने कुछ भी नहीं आ साथे ना सुले क्या
0: महाराज तू सुले बड़ा गोछा तू सुले।
3: अच्छा वाक दो समस्या है सने जानदा तू ही हो
0: समस्या बिल्कुल दसा जी।
3: इंदा बिलीज बनगोटो आ ग्रा वास्ते कोई ना सड़काई सुलत आ।
0: हां जी
3: और मैं कल दसी तुसी हो कि देवदार बड़वारी लग रहा है तिया जो कढ़ने वास्ते सरकार कोई बंदोबस्त ना करू करन दे।
0: अच्छा तबे तो तुंदे नोए काउंसलर भी बन गए ना
3: ए लाने करा काम करने दा ता आओ।
0: अच्छा
3: काम मेरे मुनाइया तो सोकर लाने मिंजे दास वाला तुम इन्या का अपना जी शहर ना ठनका कतोनिया दा डो लारियो।
0: अच्छा
3: ये गलत है
0: चलिए इस बारे में टिप्पणी ना कर सकते हैं लेकिन तो है अपनी समस्या की असो दस ही दिया हजारों लख मन होने कर दें भू सकते थे तीमें से जो इन द विधायक ने धर्मशाला रहते हैं कुछ ऑफिस वाले होने कर दे भून या फिर
3: समस्या ये सत्यन की ये जितना देवदार बूटा लगूरा ना इन दिलीज बनगोटू ना।
0: हाँ जी
3: ये किजो पता है तू गद्दे मानो जिंदी जाड़ बिड़ोड़े कसी जुआ।
0: अच्छा
3: इन्हें तो सरकार कुछ ना कुछ करा था ये बूटे ऊपर गान 10-15-20 बूटे में गड्ढे ने।
0: अच्छा
3: और सरकार कुछ ना कुछ तेरे वास्ते करा था ठांग दिखाई करा हजारा रे साहब बूट लगूरा कोई मतलब कोई घाट नहीं है।
0: अच्छा
3: तेरे वास्ते सरकार कुछ ना कर दे।
0: चलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रे मामला।
3: हाँ जी हाँ जी
0: चलिए अब हो सकते कि अगर ना ही होने कर दे बोले वैसे तो लख मन होने देने हजार मन होने देने सौ भी होने तक
3: वंदे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला बड़ा भारे गंदा करा।
0: हाँ तो चलिए है तुम्हारी गल की है सो तड़ी तक जरूर रख ले है ना जी।
3: मैं कल ले दो इतना ही बारी बल्लू तुसी
0: हो है जी बिल्कुल तो है बल्लू तो था इंदा काम में कि एक ब्रिज है ये काम करना ना अबे तो ऐसु बल्लू तो है आगु पजाई देते बुने जानकारी है ना अबे आगु वाले ना काम कर लेता ए इंदा फर्ज ना बनदा फिर कि तिन्यो है टॉर्चर करनी या तिन्यो जबरदस्ती वालना है ना इंदा काम में कि जो मनोरी समस्या सो तड़ी तक रहे पहुंचान सो है पहुंचाने में भी कुछ सक्षम बनदा।
3: अबे इंदा बीजेपी रे एमएलए आसदीर शर्मा जी
0: जी
3: यारा भी थोड़ा फर्ज बनता कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो बल्ले करे
0: बिल्कुल बनता जनता जनता जनार्दन रहा और आऊं तो सुवाक गाइडलाइन ये भी देना चाहता कि तो है बनगोटू थो तो थोड़ा करे थल्ले दोसना रकड़मा था रकड़मंस था त्यारा निवास स्थान है ना जी सुधीर शर्मा जी का निवास स्थान था अग मुके तड़ी त्यारे ऑफिस में खिंच कर गया सो तो है कंप्लेंट लिखाई सकते हैं बल्ले सकते हैं। लेकिन चिंता ना करना चाहिए ना, चिंता तो चिंता चिंता तो चिता अंदर से फक्की बिंदु रभर का ज्यादा कुछ फर्क नहीं
3: है। तुसी पता या ना पता आक मेरा तार ग्लाइडिंग सोगी चली मरी सूरा हल्का हल्का पुत्र
0: जी
3: ठीक है सो मेरा थू और आका हरिद्वार में जरूर गड्डी ले बजरे दे सो थड़ी गया सूरा ठीक है।
0: ओहो
3: आओ जरा या टाइम सो अंदर आना ता वहां पर आदमी मता कुछ करे ये चक्कर।
0: चलिए फिर
3: और जात के अच्छा आग चल मेरी और हुने
0: जी।
3: इस मेरे मामले अंदर कसी भी साथ न दिता
0: जी।

0: और मेरा साथ दिता 12 आदमी और रात की नींद गया तम नमस्कार करा 10 आदमी और मेरे सब रिश्तेदार ना का जो लेने
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है ना। और मेरे नेड़े रिश्तेदार मेरे ना कि दूर रिश्तेदार हैं
1: जी
0: और इन काम ना करूँ लेकिन तेने 12 बंदे काम करूँ हर जगह सोगी को अपनी गड्डी ले करे को सचिन और मैं एक दिन तक बोले जोड़े हाथ करा मिलो रब दीजिए गड्डी ये चाल भी लगता
1: जी
0: और अगले जवाब दिता चाचा गड्डी मेरी नहीं है गड्डी तेरे है किरे ना बंदे मानू ये थोड़ी ना फोन करी ते भोचेगा ना काम तो होती है भी काम हुए कभी
1: जी जी जी
0: और मेरे रिश्तेदार ने कहे ना लेने यार आऊ घरे घरे गो यार ये समस्या पर इन्हें ना करे
1: चलिए हबे रिश्तेदार रखो ना लेने ने और समस्या
0: पता लगो जिन्हें जिन्हें गुंजर रेडी हूँ बोला ना
1: जी जी जी
0: जिन्हें पता लगो है कि कौन बल्लू करना
1: अच्छा
0: तो समझ गया
1: चलिए ठीक है जी
0: और अंत से 12 बंदे रे सचन दीजिए तो छड़ दे धन्यवाद पर राती भी धन्यवाद करना तो फिर
1: अच्छा
0: है कि मेरे काम में ऐसे थी 10 लाख तेरा बैंक लोन थो
1: अच्छा
0: सो तेने सब कुछ गुरवाई था
1: अच्छा
0: ठीक है ना
1: जी
0: तो बंदे तीन दिन बंदे रहा सचन तो बेचारा 12 रहा क्या बता क्या ली मेरे घर है तब गुरु मैं दस ते तीन ज्यादा गल कर रहे आज मेरे कम में चले आज
1: हर कोई बंदा किया सो मतलब कोई भी बंदा किया सो कहने भी करखा भी कम में कि ऐसो इस सकता है ना जी ये तो आए जिंदगी का दस्तूर है कि असू कसी योग्य भी कि ऐसो हमेशा सर जो
0: मैं सो तो गल सचिन बिल्कुल सही है तेरी लेकिन यार रिश्तेदार और सक्के रिश्तेदार बुझगरी कम में ना ही ना त्रिया बंदा बाहर आ रहा कम में ही है यार उस बात का भी तो अफसोस लगता थोड़ा कि नहीं लगता
1: अफसोस तो बंदा जी अपने तो अक्सर ना ही दिन दिन साथ अपने
0: वो मेरे सक्के रिश्तेदार नवा मरंदे खड़े ही नहीं कर लाने
1: चलिए ठीक है जी तुंदे दर्द जो है समझ सकू कर दे ना लेकिन इस समय कम्युनिटी रेडियो और है लाइव गल करू कर दे ता थोड़ा करे शब्द रहा सो ध्यान रखना पैना बाकी चलो जी जो तो है समस्या दसिया सो हम जरूर फॉरेस्ट गार्ड तक भी पहुँच ला डिपार्टमेंट तक भी किए माफ़ करा सो पहुँच ला और आफ्टर लाइव है और तो है सुधीर शर्मा री गल करू कर दे थी तो त्यारे जो ऑफिस रहे त्यारे जो पी ए हैं तिया तक भी आऊँ तुम्हारी समस्या की सो जरूर पहुँच ला लेकिन ए समस्या रहा मुझो ए समस्या रहा जनाब मुझो आ गल आ गल मुझो ये समस्या है दसा तो ये दस होंगे कि देवदार रहे पेड़ के न सो बनगोटू मां लुड रहे ने झिंडी न सब कुछ आ लेकिन तती में से तुसु मतलब तुस ही ऐसे फाक सोशल उति वास्ते दसू कर देन कि तुसु कुछ तिन्या पेड़ लुड ने थों कुछ पर्सनली कोई दिक्कत आ
0: लुड थोड़ी ने काटन दे
1: लुड़ी गुछू रहे न
0: ओ लुड रहे नहीं है बनगोटू में कुछ ना लुड़गा कोई ना लुड़गा ना
1: हाँ हाँ
0: पर सु जिंदी जंडी दा तीजो बता सो जाड बडोड़ा लटरम पटरम कसी इतवे नहीं है सो उठना नहीं छुवर
1: तो है के चांद दिन की डिपार्टमेंट तड़ी च करी इन्या जिंडी बड़ा
0: ओ बड़ा ना तक बड़ा का सीधा समस्या कुछ ना कुछ हाल करा तो देवदार लौरे का जनो फिर
1: अच्छा तो चांद दिन की सो देवदार के अनसो जिंडी री वजह थों के न सो रुको कर देन
0: हां जी हां जी
1: अच्छा
0: तो है ना
1: चलिए ठीक
0: है हर किसी का पता है तो आई नहीं है कि पता नहीं है कि मतलब आपने गद्दी भाई तू है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ तब आऊ ये चांदा कि सो बता रहे देवदार उठ जी है बच्चे ना आप जी किस मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एड्रेस वो
1: जी जी जी
0: इना है ना
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ तो तीन अपने बच्चे जो काटे में डांगाई थे अज मां कंत मैं जो काटू वैसे मतलब चौर चौर पांच पांच फुट मतलब उच्चे हो गया
1: अच्छा चलिए जनाब तुंदे जो ये समस्या ना ये मैं इधर सीता तो सो गया है जरूर पहुँच ले आगू कार्यवाही भुंदे ना भुंदे वे सो तिया तक रिंदा काम तू ना करे कि तुंदे जो गल आ सो तड़ी तक रासु पहुँचाने है ना जी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: चलिए जी लेनो तो सुधो इजाजत
0: ता ठीक है ठीक है मुझे गाना होना है ये कालुआ मजूरा
1: ठीक है जी जरूर होना
0: भाई क्या मजूर मनो मजूरा रहा होना गाने
1: ठीक है जनाब जरूर
0: ठीक है धन्यवाद
1: धन्यवाद श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला है और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही है। बहुत सारे श्रोता कॉल करो कर दिन सब भी वो कनेक्ट है जरूर कर ले कोशिश हिंदी जरूर रन दिया बहरहाल लेके चलते तू सब भी जैसे प्यारे देगी तरीके नारी। श्रोतों तो है सब बन रहे ना सो गए और गीतारी फरमाइश आ गया ना सो आई हिन और इन्या फरमाइश जो है ज़रूर पूरा किया सो करते हैं। फिलहाल कार्यक्रम जो है बढ़ते हैं छोड़ो और कार्यक्रम मंच लेकर ही चलते तू सब भी जो इस प्यारे दे गीतारी किनारी। बहुत सारे श्रोता के इनसे कॉल करो कर देना है ज़रूर कोशिश कर दें कि सभी जो कनेक्ट करने लेकिन सुखी सुखी जानकारी रह बिटा रह गया सो भी दासु खोलना है ना लेके चलते तू सब भी जो इस गीतरी किनारी बने रहा रेडियो गुंजन री एहा गूंज सोगी।

0: शत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा और हूँ सचिन कपूर तो सो के बिल्कुल लाइव हाजिर है तुंदे सभी रे रेडियो सेट में बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है आकमुख है फिर सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा कुछ एक खास जानकारी है तो सो के शेयर करो कर देन श्रोताओं साझा करो कर देन और सोगी सोगी ही श्रोताओं बिल्कुल इन खास जानकारी सोगे किया सोगी संगीत भी तो है वेडी गुंजन मंच किया सो हूँ कर दे है ना ता चलिए चल दें थोड़ा करे और आगू बढ़ दें इन श्रोताओं और इन दे श्रोता करना सोगे कनेक्ट हुए ना पुछ दिन कौन बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू देन और अन्य जानकारी होगी तो सो साझा कर बंदे हिन नमस्ते जी
1: नमस्कार प्रणाम सचिन जी प्रणाम
0: हेलो नमस्कार जी
1: नमस्कार
0: माफ कर जी तुंदी आवाज़ नहीं चु कर दे असो डिसकनेक्ट के करना पे हुआ श्रोता हूँ फिलहाल कार्यक्रम जो थोड़ा करे और आगू बढ़न दे और अगली जानकारी होगी कि असो तुसो शेयर कर दे हैं तो है भी बाखूबी असो की जुड़ी सकते हैं बाखूबी कॉल कर सकते हैं 7081-8-8-709 पर नंबर आक मौके फिर 7081-8-8-709 पर ता चलिए श्रोताओं अगली जानकारी होगी तुसो रूबरू कर बंदे ने हिमाचल वी सुखू सरकार की 2300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना रा लाभ पात्र परिवार तक जल्द पहुंचाने वास्ते की श्रोताओं सो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड रे उपचारिकताएं के ऐसे पूरी करने रा अभियान तेज करी देता है जिन्या परिवार री उपभोक्ता आईडी या राशन कार्ड रा विवरण अधूरा है तिन्या जो प्राथमिकता वे आधार पर किया सो अपडेट तिन्यो करू कर दे हैं ना ताकि कोई भी पात्र परिवार लाभ थों किया सो वंचित ना रहे गच्छा ठेरा पता चलते ही वाजे बिजली बोर्ड मा ऐसे मामले थों संबंधित अधिकारियों और फील्ड कर्मचारी जो कि असो पूरी तरीके हो गए जुटाई देता है और जुटाई करें ऑनलाइन पोर्टल पर के असो अपडेट करने वे निर्देश के न सो भी देते हैं श्रोताओं तो इस प्रकार की जानकारी तुसो गए चलती रहनी हिन श्रोताओं तो सब हुणु करदे हैं इस समय एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला और आऊँ तुंदा अपना नाचीज सचिन कपूर तुसो के उपस्थित था मौजूद था फिलहाल कार्यक्रम मंच फरमाइश अरा दौर के सो भी पूरा कर दें हक फरमाइश इंदे श्रोता आई थी सो फरमाइश कुछ भजन थो रिलेटेड आई थी तो ज़रूर मैं माइंड तो थोड़ा स्किप हो चुके सो ज़रूर कोई भजन तो सो ज़रूर होने दें तुंदी आस्था जो सूठे ना पहुँचाने

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून को रॉ कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के सो लाइव चल रही ना तो सब जरूर अस हो गए जुड़े सकते हैं 7081887 09 अक पर बहरहाल चलते हैं कार्यक्रम जो आगे बढ़ते हैं और लेके चलते तो सब भी जो इस इंदे श्रोतागण जिन्हें फरमाइश करे थे भजन होने रही था भैया प्यारे दे भजन के अस वंदना दिवा

0: শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা তো হেসা বিএটি উনকো রর কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপ্পাগানে সো চল রহিন রেডিও সেট মঞ্চ তো চলি ইন্দে শ্রোতাগণনা সো গিয়া কর কানেক্টেড হিন পুসদেন কোন বলুন্দেন অর কড়িত বলুন্দেন নমস্তে জি
1: নমস্তে
0: হ্যালো
1: হ্যালো নমস্তে
0: নমস্কার জি নমস্কার
1: নমস্কার সত্যি কি হাল
0: হ্যাঁ বহুত বড়িয়া জি তো ভালো
1: सर जी पहले तो ये है कि ये जो सावन का महीना है
0: जी
1: ये बड़ा शुभ महीना है शिव भगवान का
0: जी
1: तो इसमें आज कलसी मसान था आज संक्रांति है
0: हाँ जी
1: तो कुछ परंपरागत बातें करना चाहता था उसे
0: जी
1: तो आज जो संक्रांति है वो जो खास संक्रांति इसलिए कि पुराने जमाने में हम क्या करते थे कि आज की संक्रांति को चिड़नू की संक्रांति बोलते थे
0: हाँ बिल्कुल
1: चिड़नू की संक्रांति इन दिनों क्या करते बारिश बड़ी हुई थी और जो हमारे पशुधन होता था उसको चीतड़ पड़ जाते थे
0: जी
1: तो चीतड़ों को निकाल कर आटे में डालकर हम उसे जलाते थे और सारे ही पुराने लोग ऐसे करते थे
0: बिल्कुल
1: आजकल शायद जो आजकल की जो जी जनरेशन को पशु बारे में ज्ञात भी नहीं होगा
0: जी
1: चिड़नू की संक्रांति के बारे में ना
0: जी।
1: और जाते थे और खुशी मनाते थे सेलिब्रेट करते थे तो एक तो ये चीज है दूसरा भी इसके बारे में जो आपने जो बाबू वालनाथ जी की भेंट सुनाई है ये सुना के बड़ा धन्य कर दिया अभी जो बाबू वालनाथ जी की भेंट सुनाई ना
0: जी जी जी जी
1: बड़ा बड़ा धन्य किया उसको बहुत बढ़िया लगा मुझे
0: जी।
1: अच्छा उसके ऐसा कि जो बाबू वालनाथ के बारे में आजकल अमरनाथ का भी चला हुआ
0: जी
1: अमरनाथ की यात्रा
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: उसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ
0: जी
1: कि आज से कुछ वर्ष पहले की बात है कि जो बाबू बर्फानी का जो शिव मंदिर था वो कम से कम 1.5 महीने में दिखता था तो
0: जी।
1: फिर वो कम होता फिर 57 दिन आ गया 37 दिन आ गया 27 दिन आ गया और कोविड के टाइम तो और कम इस बार तो 5 दिन दिखा 5 दिन टोटल
0: पता जी पता
1: तो लोगों को निराशा हुई है बहुत ज्यादा
0: जी
1: और इसका कारण भी बताया उन लोगों ने कारण ये है कि जो पोल्यूशन है ना हम पोल्यूशन पर इकट्ठा करते कर रहे हैं कचरा वगैरह सबसे बड़ा कारण इसका ये साइंटिस्ट ने
0: जी
1: अगर आप जागरूक ना हुए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा
0: बिल्कुल
1: तो दूसरा यह है कि इस बार अभी आप बोल रहे थे कि बारिश भी कम हो रही थी पिछले कल बोल रहे थे तो उसके कारण भी सुपर अल नीनो जो चला हुआ उसकी वजह से भी सारा कुछ पड़ा हुआ
0: जी
1: और आने वाले दिनों में ना जाने क्या क्या होगा कुछ नहीं कह सकते
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: दूसरा अभी आप एक विषय फिर था कि प्रसन्नता का कारण प्रसन्नता रहने का सबसे बड़ा कारण प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस तरह का अपने नेचर के समीप रहोगे ना प्रसन्न रहोगे
0: जी
1: पर इसके साथ साथ एक छोटा विषय है कि हमने नेचर छोड़ी कहाँ है पेड़ नहीं छोड़े कुछ पेड़ कटती तो रही नहीं हम किसके समीप रहेंगे फिर हम प्रसन्न कैसे रह सकते जिस तरह हम भौतिकवादी वस्तुओं के पास जाएंगे ना हमें निराशा ही होगी ज्यादा देर प्रसन्न नहीं रह सकते
0: बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी तुम्हारी सब गल है बड़े ध्यान होगी कि ऐसा होनी ना और थोड़ा करे इजाजत चंद इन को चुकी ऐसा बहुत सारी जानकारी जो श्रोता तक पहुंचानी ना और समय समय पर तो है सो होगी जुड़ दें तो तहे दिल तो धन्यवाद करना जनाब
1: जी जी धन्यवाद धन्यवाद
0: धन्यवाद चलिए श्रोताओं तब फेसबुक के जरिए भी कैसो है लाइव उसी दिन ताकि जानकारी की ऐसा फेसबुक के माध्यम तो भी इन श्रोता तक की ऐसा जरूर पुजा तो सब ये समय ट्यून कर रहा है रेडी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर हाँ तो सुसो गे तुंद अपना आर जे रेडियो चौकी रेडियो मंच अक्सर बलनो जहने भी तो है रेडियो मंच कॉल कर दें ता अपनी वाणी च वाणी रह गया सो खास ख्याल रखना है ना और वाणी में शुद्धता के असो जरूर ले करें है ना असो बहुत अहम रहेंदे आ बहुत मायने के असो रखते हैं बहरहाल जो है जानकारी की असो तुसु तक बे यहाँ लगे करना तो मानसून तो रिलेटेड है वैसे इस समय हिमाचल में मानसून की सो धीमा जरूर बुझगो, लेकिन दसो कर दिन के शनिचर त्वार जो बरखा गया सो बुझ सकते हा, है ना। मानसून रे दौरान पर्यटक और ट्रैकर्स भी सुरक्षा सुनिश्चित करने वास्ते श्रोताओं जिला प्रशासन ने किया सो एडवेंचर गतिविधियों जो लेकर के सो सख्त नियम लागू करी देते हैं जनाब। जोखिम भरे ट्रैकिंग मार्ग पर बिना पंजीकरण आवाजाही पर रोक लाई देते हैं, जो कि पहले भी लग रहा लेकिन फिर इति जो रिपीट करो करते हैं। और रिकवरी वास्ते के सो पह तुसु देना पैना हाँ। एक और गल तुसु हो गया उन दसीनों हाँ, रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियाँ भी निर्धारित अवधि तक के ना सो बंद रहनी हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर किया सो वेस्क्यू का खर्चा स्वयं तिन्यों चुकना पैना हाँ, और कानूनी कार्रवाई किया सो भी किया तेरे सामने आनी और ठेरा भी किया सो सामना करना पैना हाँ जनाब। अगर तो है नियम रे उल्लंघन करो और रेस्क्यू करने वास्ते किया सो पता लगो प्रशासन जो तो रेस्क्यू का खर्चा भी तुंदा भूना हाँ, और जो कानूनी कार्रवाई भूने तुस ऊपर सो भी ठेरा खामियाजा किया सो भी तुस वही भुगतना पैना है, जिन्हें कि रूल्स ब्रेक करे तसी जो भुगतना पैना है। श्रोतों आदेश

उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई के अशुभ गुण हैं। यदि कोई व्यक्ति नियम री अनदेखी कर ट्रैकिंग करता है और सिर रेस्क्यू अभियान तसी वास्ते चलाना पैंदा है तो तस्यो पूरा खर्चा किया पूरा खर्चा संबंधित व्यक्ति रा हाँ पूरा खर्चा किया सो तस्यो चुकना पैना है रेस्क्यू रा और सोगे सोगे अधिनियम रे तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी किया सो तस शख्स पर भूणी हाँ जिनिया रूल ब्रेक करे जिनिया नियम रा उल्लंघन करोता है ना। पर हाल इसी प्रकार होगी खास जानकारी के अनुसो चली रहनी इन शोधों बने रहे जुड़े रहे इस नाचीज सचिन कपूर सोगे और रेडियो गुंजन रे इसी गूंज सोगे। लेकिन चल दे इन शोधों तू सब भी जो अब इस प्यारे दे गीतारी कनारी गीत संगीत था बिल्कुल एक माध्यम बंदा इंदी खुशी जाहिर करने रा इंदा गाम किया सो जाहिर करने रा बरहाल लेके चल दें तू सब भी जो इस कनारी।

0: प्रशोतों अब वक्त हो चुका अलविदा लेने रहा। तो श्रोतों होप सो तुसु कार्यक्रम की सो पसंद आ बुना हा और कार्यक्रम मंच जो है जानकारी तुसु तक पहुँचाई ने सटीक जानकारी है ऐसे तुसु तक पहुँचाई हिन और आऊँ सचिन कपूर हबे तुसु थो ले लेनो इजाज़त समय बुझगो आ तुसु थो इजाज़त लेने रहा कजो कि समय कसी वास्ते ना रुकदा श्रोतों तासु तुसु वास्ते कि रुकी सकता हा। बरहाल आऊँ लेनो इजाज़त हंस दे रहे मुस्कुरें दे रहे माँ बाप की सेवा कर दे रहे पर्यावरण जो साफ सुरक्षित जरूर रखा और हमेशा मुस्कुराओ कर ऐसा तो इन शब्द था लेनो इजाजत। नमस्ते धर्मशाला।
1: एंड लाइव वीडियो वंस भी बनाना ना
0: हो गया बच का आ जा तू।
1: अच्छा ये वहां लटका दे तो लटका नहीं देता हूं लगा दो इसको गाना नहीं।

नमस्कार, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर।

प्रतिबंधित मार्गों पर अफसरों को अब एक ही गाड़ी का परमिट मुख्य सचिव से लेकर अन्य बड़े अधिकारियों के लिए नई व्यवस्था बनाने की तैयारी। इको टूरिज्म को रफ्तार, प्रदेश की 50 साइटों का आवंटन। बीपीएल जरूरतमंदों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी। सोलर प्लांट को अब ऑनलाइन भी होंगे आवेदन। अब समाचार विस्तार।

जंगल। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला अस्पताल लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, कुल्लू, ऊना और सोलन जिला अस्पताल किन्नौर डॉक्टर बाईएस परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नाहन, क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला तथा पालमपुर में 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित की जाएंगी। उनका कहना है कि प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई मशीनें भी लगाई जा रही हैं, जिससे विशेषज्ञ जांच और उपचार की सुविधाएं और अधिक बेहतर होंगी। सुख सरकार ने 5 दशकों से अपनी माटी से बेगाने हुए कांगड़ा जिला के 131 पोंग विस्थापितों के आंसुओं को पोंछकर उनके जीवन में सुख की नई रोशनी बिखेरी है। सुख सरकार के भागीरथी प्रयासों से छकलेड़, खैरिया, छप्पर भटोली, फकोरिया तथा भंगोली के 131 पोंग विस्थापित परिवारों को जमीन का मालिकाना मिला है। इन प्रयासों ने न केवल पोंग बांध विस्थापितों को भूमि मालिक बनाया है, बल्कि उनके खोए हुए गौरव, आत्मसम्मान और सुरक्षित भविष्य को भी पूरी तरह बहाल कर व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को साकार किया है। राष्ट्रीय वैदिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक मध्यस्थता मुकदमा मुक्त ग्रामीण भारत की ओर परियोजना के द्वितीय चरण को देश भर में प्रारंभ किया जा रहा है। ये जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा आर मिहुल शर्मा ने देते हुए बताया। जिला कांगड़ा में परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु 5 गांव का चयन किया जा रहा है, जिनमें ग्राम स्तर पर सम्मानित एवं समाज सेवी व्यक्तियों का सामुदायिक मध्यस्थ के रूप में चयन करके उन्हें प्रशिक्षित मध्यस्थों द्वारा विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे आपसी सहमति एवं संवाद के माध्यम से ग्रामीण विवादों का समाधान कर सके। हिमाचल प्रदेश में प्रतिबंधित सड़कों पर सरकारी वाहनों के उपयोग को लेकर सरकार सख्ती की तैयारी में है। मुख्य सचिव से लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को अब प्रतिबंधित मार्गों पर आवाजाही के लिए केवल एक सरकारी वाहन का ही परमिट देने की व्यवस्था बनाई जा रही है। इससे एक ही अधिकारी के नाम पर कई विभागों की गाड़ियों के प्रतिबंधित मार्गों पर चलने की व्यवस्था पर रोक लगेगी। वन विभाग ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 इको टूरिज्म साइटों का आवंटन कर दिया है। आवंटित इको टूरिज्म साइटों पर 30 से 40 टेंट लगाने की अनुमति रहेगी। यहां कैंपिंग, ट्रैकिंग, मोटर बाइकिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, फूड स्टॉल और फूड वैन जैसी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। स्थानीय पारंपरिक व्यंजनों की स्टॉल नेचर हट के नाम से विकसित किए जाएंगे। विभाग का मानना है कि इस परियोजना से गाइड हॉस्पिटैलिटी और स्थानीय उत्पादों की बिक्री जैसे क्षेत्रों में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे और तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हिमाचल की सुक्खू सरकार की 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ पात्र परिवारों तक जल्द पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने औपचारिकताएं पूरी करने का अभियान तेज कर दिया है। जिन परिवारों की उपभोक्ता आईडी या राशन कार्ड का विवरण अधूरा है, उसे प्राथमिकता के आधार पर अपडेट किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र परिवार लाभ से वंचित न रह जाए। इसका पता चलते ही राज्य बिजली बोर्ड ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों और फील्ड कर्मचारियों को पूरी जानकारी जुटाकर ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। भारत को दुनिया का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दे दी है। ये नया फेज भारत के पहले सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 की सफलताओं को आगे बढ़ाते हुए देश को ग्लोबल लेवल पर एक आत्मनिर्भर और मजबूत चिप हब के रूप में स्थापित करेगा। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है, जिसमें आम लोगों और संबंधित पक्षों से 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां
मांगी गई हैं। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त सुझावों पर विचार कर संशोधित नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब पात्र उपभोक्ता रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकेंगे। मानसून के दौरान पर्यटकों और ट्रैकर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने एडवेंचर गतिविधियों को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। जोखिम भरे ट्रैकिंग मार्गों पर बिना पंजीकरण आवाजाही पर रोक रहेगी, जबकि रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियां भी निर्धारित अवधि तक बंद रहेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों को रेस्क्यू का खर्च स्वयं उठाने के साथ कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। आदेश इसमें जो है कड़ी कार्रवाई का जो है प्रावधान किया गया है। हिमाचल सरकार इन सर्विस शिक्षकों के लिए स्पेशल टेट करवाने जा रही है। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड को शिक्षा विभाग की ओर से जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं इन सर्विस शिक्षकों को 2 के बजाय अब 3 वर्षों के भीतर ये परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए समय दिया गया है। राज्य में ऐसे शिक्षक जो कि 5 वर्षों के भीतर रिटायर हो जाएंगे, उन्हें इस परीक्षा से जरूर छूट मिलेगी। इसके साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों और स्कूल प्रमुखों को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे शिक्षक निर्धारित समय सीमा के भीतर टेट उत्तीर्ण करें। अमेरिका के दोनों प्रमुख दलों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के एक समूह ने सीनेट में एक ऐसा विधेयक पेश किया है जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले भारत, चीन समेत 5 देशों पर 100% तक आयात शुल्क यानी कि टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। भारत और चीन के अलावा स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान भी इस प्रस्तावित 100% टैरिफ के दायरे में शामिल हैं। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

हम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय अब शुरू हो गया है, यानी कि शाम के 6 बज चुके हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आज लेकर आई है आपके समक्ष आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा। सबसे पहले हमसे जुड़ने वाले सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और आज का दिन आपका बिल्कुल अच्छे से निकला होगा और शाम को और अच्छा बनाने के लिए और हसीन बनाने के लिए कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ। श्रोताओं, आप सभी को बता दें 88.4 MHz पर हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और सुन भी रहे होंगे। तो हमीरपुर के साथ जुड़े जितने भी हमारे श्रोता हैं, उन सभी को भी सुषमा की प्यार भरी नमस्कार, गुड इवनिंग। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ जल्दी से जुड़ जाइए और जो लोग जुड़ चुके हैं उनका तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम में, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे हम बार बार यही कहेंगे कि आइए जल्दी से कार्यक्रम के साथ जुड़ जाइए। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला की शुरुआत जैसा कि आप सभी को पता है हम करते हैं विचार के साथ। तो आज का विचार लेते हैं, बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना है। बिल्कुल श्रोताओं, और इस विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और आप सभी जानते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में विचार के साथ साथ आपके साथ साझा की जाती हैं जानकारियाँ, साथ ही आपका मनोरंजन करवाया जाता है प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो गीतों की एक माला आज भी मैं पिरोकर लाई हूँ, जिसका एक एक मोती आपके रेडियो सेट पर ज़रूर भेजा जाएगा। उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का समय रहता है रोज़ाना शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, और इन 2 घंटों में हम आपके साथ करते हैं बातचीत, साथ ही आप तक पहुंचाते हैं जानकारियां। और कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं श्रोताओं आज के कार्यक्रम के पहले गीत से। ये प्यारा सा गीत श्रोताओं आप तक पहुँचा रहे हैं 10 लाख फिल्म से, और इस गीत को आवाज से सजाया है मोहम्मद रफी ने।
1: सुपरहिट गाने सब्सक्राइब नाउ एंड

0: लग जागले दिल जुबा।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आपने सुना ये प्यारा सा गीत श्रोताओं, और ऐसे ही गीतों की एक माला जो हम रोज़ लेकर आते हैं आपके सामने, और आज भी लेकर आए हैं श्रोताओं। बहुत प्यारे प्यारे गीत हैं, और उन गीतों के साथ जुड़ने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो सभी श्रोताओं से हमारा यही आग्रह है कि जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से अपना रेडियो सेट ऑन कर लें और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हमारे साथ जुड़ें। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम रोज़ाना बात करते हैं खास दिन के लिए, आज का दिन हमारा क्या था, हमने कौन सा दिन मनाया। और साथ ही श्रोताओं बता दें कि जो भी दिवस हम मनाते हैं उस पर सुबह के कार्यक्रम यानी कि गुड मॉर्निंग धर्मशाला में भी हमारे आरजे दोस्त आपके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन शाम का ही समय होता है। और शाम के समय हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे होते हैं जो सुबह के समय गुड मॉर्निंग धर्मशाला में नहीं जुड़ पाए होते हैं, उनके लिए हम फिर से उन बातों को थोड़ा सा दोहराते हैं। तो श्रोताओं, आज जिन्होंने भी कार्यक्रम सुना होगा गुड मॉर्निंग धर्मशाला, वो सभी जानते होंगे कि आज हमने किस बारे में बात की थी मॉर्निंग में, और आपने सुना भी होगा कार्यक्रम में आज पिंकी के साथ। आज श्रोताओं 16 जुलाई का दिन है, और आज के दिन विश्व सर्प दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में सांपों के प्रति फैली जो गलत धारणाएं हैं उन्हें दूर करना है और उनके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। तो श्रोताओं, सांपों का नाम सुनते ही हम लोगों के बीच में एक डर, एक भय जो है वो पनपने लग पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर सांप जहरीला नहीं होता। भारत में पाई जाने वाली अधिकांश सांपों की जो प्रजातियां हैं वो विषहीन होती हैं। और साथ ही श्रोताओं आपको बता दें कि बहुत सारे कुछ ऐसी जो प्रजातियाँ हैं उनका जो विष है वो बहुत सारी दवाइयों में भी काम आता है। तो श्रोताओं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमें कहीं कोई सांप नज़र आता है तो हम अपने आप को बचाने के लिए उस पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं डंडों से, पत्थरों से, लेकिन श्रोताओं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से सांप को देखकर हम डर जाते हैं, हमें देखकर भी वो सांप हमसे डर जाते हैं और अपने बचाव में वो कहीं ना कहीं हमें डंक मार देते हैं। तो श्रोताओं, आज इस खास दिवस पर आप लोगों से बात सुबह भी हो चुकी है और आज भी हम आपके साथ इस समय भी कर रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। तो चलिए इस खास बातचीत को जोड़ते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, और आपको सुनवाते हैं निगाहें फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में श्रोताओं, अभी आपने सुना ये गीत, और इस गीत को सुनकर कहीं ना कहीं आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज हम लोग वर्ल्ड स्नेक डे मना रहे हैं और इस पर ये गीत जो है वो आधारित था। श्रोताओं, सांप जो होते हैं वो कहीं ना कहीं, सांप हो या कोई भी जीव जंतु हो, वो अगर हमें डसते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए डर से हमें डसते हैं। लेकिन खैर, कहते हैं ना कि सांप की प्रवृत्ति या जीव जंतुओं की प्रवृत्ति जिनकी मारने की होती है उनकी होती ही है, लेकिन उनसे हमें अपना बचाव ज़रूर करना चाहिए। और बरसात का ये जो मौसम आया है, इस मौसम में भी हम आपसे यही कहेंगे कि अपने आप को संभाल के रखिए। कहीं बाहर अगर आप निकलते हैं तो जो शूज़ हैं वो पहन कर जाएँ, और साथ ही कहीं भी घास में अगर आप जाते हैं तो बच कर रहें। खास करके जो हमारे पशुपालक भाई बहन हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आजकल आप लोग जो है वो घास में भी जाते हैं, अपने पशुओं के लिए चारा लेने जाते हैं, और ऐसे में अपना ख्याल भी रखिए। कई बार हमें नहीं पता होता, कहीं भी घास काटते समय या कोई भी किसी भी पेड़ पर अगर हम चढ़ते हैं अपने पशुओं के लिए पत्ते लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें इन जीव जंतुओं से थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रखना है, सावधान रखना है। सावधानी रखेंगे तो अपना बचाव भी हम कर पाएंगे, और साथ ही जीव जंतुओं की रक्षा सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आप सभी बने हुए हैं, और कार्यक्रम आज आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम में बहुत सारी बातें श्रोताओं आपके साथ करते हैं, और आज एक ख़ास बात भी आपके साथ करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं श्रोताओं जो हम कहीं ना कहीं से सुनते हैं, कोई सोशल मीडिया का कोई एक प्लेटफॉर्म होता है, कहीं से भी हमें कोई जानकारी या कोई ऐसी बात अगर सुनने में मिलती है, पढ़ने को मिलती है जो हमें अच्छी लगती है, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि इन बातों को हम अपने श्रोताओं के साथ ज़रूर साझा करेंगे। क्योंकि श्रोताओं कहते हैं कि किसी भी बात को अगर हम किसी के साथ साझा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बात किसी के दिमाग में चली जाए, और उससे हो सकता है बहुत सारे लोगों का भला हो। तो आज एक ऐसी खबर जो थी वो मैंने भी सुनी, और मैंने सोचा था कि आपके साथ अगर हम बात करेंगे तो इस पर ज़रूर बात करेंगे। श्रोताओं, ये जो खबर है ये जिला सिरमौर की है, और वहाँ के एक सिलाई गांव की है, जहाँ के लोगों ने खुलकर एक अपनी पंचायत के पंच जो हैं वो चुने, और उसके बाद बहुत से ऐसे फैसले लिए जिनके फैसले सुनकर मुझे भी अच्छा लगा, और बहुत सारे लोगों ने अगर उनके वो फैसले सुने होंगे तो बहुत राहत की सांस भी लोगों ने ली होगी, और ऐसी सोच जो है होनी चाहिए हर किसी में श्रोताओं। और उन्होंने क्या फैसले लिए वो आपके साथ ज़रूर बताएंगे श्रोताओं। उन्होंने ऐसे फैसले लिए कि कहीं पर भी अगर हम शादी करते हैं, लड़का हो या लड़की हो, एक तो दहेज प्रथा तो हम कहते हैं कि ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी हमें एक दहेज की प्रथा तो ख़त्म है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि हमने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया या हमने उन्होंने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट नहीं होता है श्रोताओं। बोलने को हम लोग जो है वो शब्दों का हेर फेर कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो माता पिता पर बोझ बनता है। तो श्रोताओं, ये सिरमौर ज़िले की जो मैं बात बता रही हूँ उसमें उन्होंने जो फैसले लिए हैं उसमें ये कहा गया है कि किसी भी लड़की की शादी होगी तो किसी भी तरह का कोई भी सामान जो है वो अपनी बेटी को ना तो दिया जाएगा ना ही कोई लेगा। उसके साथ ही गहनों की बात करें श्रोताओं, तो गहनों का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और आए दिन हम देखते हैं कि लड़कियों की शादी पर बहुत सारा जो है गोल्ड बनाकर लोग देते हैं। खैर, जिनके पास तो बहुत सारा धन है वो तो दे सकते हैं, लेकिन जो गरीबी रेखा के अंदर आने वाले लोग होते हैं उनके लिए मुश्किलात हो जाती हैं, क्योंकि लोग फिर यही सोचते हैं कि उन्होंने दिया है हमें भी कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, लोक लज्जा का मामला होता है। तो श्रोताओं, इन्होंने क्या फैसला लिया है, चाहे वो कितना भी अमीर माँ बाप होंगे या गरीब होंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 गहने जो हैं वो लड़की को दिए जाएंगे, एक नाक की तीली, कान के झुमके और गले में एक मंगलसूत्र। इन 3 गहनों के अलावा कोई गहना अपनी बेटी को ना तो कोई देगा और ना ही कोई वर पक्ष वाला लेगा। इसके साथ ही श्रोताओं, दिखावे का जो प्रचलन था वो भी ख़त्म हो गया है। इन्होंने ये फैसला लिया है कि हर शादी में 15 गाड़ियों से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलाई जाएंगी, 100 लोगों की जो बारात है वो लोगों की बारात आएगी, 100 लोग ही बारात में शामिल हो पाएंगे, शाकाहारी भोजन जो है वो बनाया जाएगा, और साथ ही देने लेने का जो रिवाज है वो बिल्कुल
ख़त्म कर दिया जाएगा। साथ ही श्रोताओं, देखिए ये सब जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी पहल जो है सिरमौर ने की है। हम तो ये चाहेंगे कि हर जगह, हर पंचायत में ऐसी एक मीटिंग होनी चाहिए और हर पंचायत को सोचना चाहिए, किसी से सीख लेनी चाहिए। कोई एक कदम उठाता है श्रोताओं, तो उन्हें देख कर बहुत सारे लोग जागरूक होते हैं और जागरूक होना भी चाहिए। खैर, अच्छी लगी ये बात तो आपके साथ साझा की, और श्रोताओं हम यही कहेंगे कि अगर आप लोग भी हमारी इस बात को सुन रहे हैं तो और भी लोग आजकल जागरूक हो रहे हैं इसके प्रति, तो ज़रूर हमें भी इस और कदम बढ़ाना चाहिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब लेते हैं एक और प्यारा सा गीत और आप तक पहुंचाते हैं इस प्यारे से गीत को, दयावान फिल्म से, जिसे हम लेकर आए हैं और पंकज उदास और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ें हैं।

श्रोताओं, आप सभी इस समय ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम जिसका समय रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, और इस कार्यक्रम के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। और अब कार्यक्रम में थोड़ा सा समय है, यानी कि छोटे से ब्रेक का समय है। इस ब्रेक को हम लेंगे और फिर से लौटेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: श्रोताओं, इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। श्रोताओं, जब हम टीवी देखते थे, जब कोई धारावाहिक या फिर कोई फिल्म देखते थे और उसके बीच में कोई छोटी सी ऐड आती थी, छोटा सा अंतराल आता था, तो हम लोग उठकर फटाफट से भागकर अपना काम कोई ना कोई छोटा मोटा कर लेते थे, ताकि उस ऐड के ख़त्म होने के बाद एकदम से हम टीवी के सामने बैठ जाएं और हमारा जो धारावाहिक है या जो भी हम देख रहे हैं वो छूट ना जाए। लेकिन बात करेंगे रेडियो की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है श्रोताओं। इसे आप चलने दीजिए और आप अपने साथ साथ जो भी काम आप करना चाहते हैं उन्हें कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गीत हैं ये हमारे कानों में पड़ते हैं और कानों के साथ दिल में उतरते हैं और कहीं ना कहीं हमारा मन खुश हो जाता है, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी तनाव से बाहर भी निकल आते हैं। तो रेडियो सेट को ऑन रखिए और अपने काम को भी कीजिए और साथ में इंजॉय कीजिए इन प्यारी सी बातों को और बातों के साथ साथ इन प्यारे से गीतों को भी। तो श्रोताओं, बातों के साथ, गीतों के साथ जानकारियाँ भी आप तक पहुँचानी हैं, तो चलते हैं जानकारियों की ओर। सुख सरकार ने 5 दशकों से अपनी माटी से बेगाने हुए कांगड़ा जिला के 131 पोंग विस्थापितों के आंसुओं को पोंछकर उनके जीवन में सुख की नई रोशनी बिखेरी है। सुख सरकार के भागीरथी प्रयासों से झकलेहड़, खैरियां, छप्पर, भटोली, फकोरिया तथा बंगोली के 131 पोंग विस्थापित परिवारों को ज़मीन का मालिकाना मिला है। इन प्रयासों ने न केवल पोंग बांध विस्थापितों को भूमि मालिक बनाया है, बल्कि उनके खोए हुए गौरव, आत्मसम्मान और सुरक्षित भविष्य को भी पूरी तरह बहाल कर व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को साकार किया है। साथ ही श्रोताओं, झकलेहड़ की पोंग विस्थापित परिवारों की पूजा रानी निशा देवी कहती हैं कि पिछले 3 दशकों से विस्थापित परिवार केवल अपने कानूनी अधिकारों के लिए अदालतों और दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। स्थिति यहां तक आ पहुंची कि विस्थापितों को अपने हक से जुड़े दस्तावेज जुड़ाने के लिए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के संवेदनशील नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार ने 5 दशकों से लंबित इन मानवीय त्रासदी का स्थायी समाधान निकाला है। जो मांगे वर्षों तक केवल फाइलों में दबी रही, उन्हें वर्तमान सरकार ने अपनी व्यवस्था परिवर्तन की नीति से धरातल पर सच कर दिखाया है। साथ ही श्रोता, उनका कहना है कि पहले जमीन का मालिकाना हक नहीं होने के कारण स्थायी निवासी प्रमाण पत्र इत्यादि बनाने में भी लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन सरकार के इस निर्णय से अब पोंग विस्थापितों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने, और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अब लीजिए, सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, सुनिए ज़रा देखिए ना। इस गीत को आप सुनने वाले हैं गीता मेरा नाम फिल्म से, और इस गीत को आवाज से सजाया है लता मंगेशकर ने।
1: अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को

जी बिल्कुल, सुनिए, आप भी सुनिए हमारे साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला पर इस कार्यक्रम को जिसका नाम है गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप सभी ट्यून इन होते हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और हर कार्यक्रम में हम आपके साथ करते हैं बातचीत और जानकारियां भी आप तक पहुंचाते हैं। आज भी श्रोताओं हम जुड़े हैं और आपके साथ बात कर रहे हैं। श्रोताओं, जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बात की कि आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्नेक डे पर, तो श्रोताओं देखिए, मॉर्निंग प्रोग्राम में भी आपने इस बारे में सुना होगा और इवनिंग प्रोग्राम में भी हम आपके साथ इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है श्रोताओं की जो श्रोता हमारे साथ सुबह कार्यक्रम में जुड़े थे वो अभी हमारे साथ जुड़े हों, या जो सुबह नहीं जुड़े थे वो अभी हो सकता है वो जुड़े हों और उन्होंने वो कार्यक्रम ना सुना हो, तो उन बातों को जो उनसे सुने बगैर रह गई हैं उन्हें हम इस प्रोग्राम में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में वर्ल्ड स्नेक डे पर हम बात कर रहे हैं और बरसात का ये मौसम है श्रोताओं, ऐसे में सांप अपने बिलों से बाहर निकल भी सकते हैं, ऐसे में बहुत सारी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। घर और आसपास की साफ़ सफाई बनाए रखनी चाहिए, झाड़ियाँ और घास की जो है नियमित सफाई करनी चाहिए। बरसात में श्रोताओं देखिए, हर कहीं जो है वो घास जो है वो निकल आता है, और जहाँ घास ऑलरेडी होता है, झाड़ियाँ ऑलरेडी होती हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ऐसे में ये जीव जंतु जो है वो कहीं ना कहीं अपना घर वहाँ बना सकते हैं। ऐसे में हमें क्या करना है, साफ़ सफाई करनी है, झाड़ियों को, घास को साफ़ सफाई करके उन्हें कटिंग कर देनी है। साथ में रात के समय में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है घर से बाहर निकलने की, तो अंधेरे में बिल्कुल भी ना निकलें, टॉर्च का सहारा लें। और दूसरी बात ये कि हम लोग अगर चप्पल पहनते हैं तो चप्पल से बेहतर है शूज़ का हम इस्तेमाल करें। और साथ ही श्रोताओं, कई बार हमारी आदत होती है, हम लोग जो हैं अपने जूतों को, खास करके कई लोग ये सोचते हैं कि घर से बाहर ही रखने चाहिए, और हमने शू रैक जो है खास करके अपने घर के बाहर बनाए होते हैं, और कई बार जो है बरसात के समय में या सर्दियों के समय में जो सांप होते हैं वो कहीं ना कहीं उन जूतों में घुस जाते हैं और हम जल्दबाजी में जो है वो शूज़ पहन लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि सांप ही हो, बिच्छू भी हो सकता है। तो श्रोताओं, ऐसे में हमें क्या करना है, या तो हमारा जो रैक है वो प्रॉपर बंद होना चाहिए, अलमीरा टाइप होना चाहिए जिसमें कि आपका लॉक लग जाए या वो पूरी तरह से बंद रहता हो, या फिर जब भी आपने जूता या चप्पल कोई भी चीज़ जो है अपने पैरों पर पहननी है उसे पहले अच्छे से झाड़ लें, देख लें, उसके बाद ही आप उन्हें पहनें। छोटे बच्चों को भी हम लोग कई बार सुबह तैयार करते हैं श्रोताओं, और जल्दबाजी में हम फटाफट उन बच्चों को, खास करके 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं, उनके स्कूल शूज़ जो हैं वो फटाफट पहना देते हैं, क्योंकि बच्चों को देर हो रही होती है। लेकिन श्रोताओं, ऐसे में कई बार हम लोग बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं, इसलिए हम आपसे भी यही कहेंगे कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप उन्हें तैयार करते हैं तो कोई भी चीज़ है उसे ज़रूर झाड़ कर ही पहनाएं, जूते हों या कपड़े भी क्यों ना हों। तो श्रोताओं, ये छोटी छोटी जो बातें हैं, सुझाव हैं जो हम आपको दे रहे हैं। वैसे तो श्रोताओं, आजकल के समय में सुझाव या बातों की ज़रूरत किसी को भी नहीं है, क्योंकि हर कोई जो है वो सतर्क है, समझदार है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग से वो बातें निकल जाती हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कान खड़े हो जाते हैं और सोचने पर हम विचार करने में मजबूर हो जाते हैं, और सोच विचार करके कहीं ना कहीं हम अगर अपने आप को बचा सकें या किसी को बचा सकें तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो कार्यक्रम में अब बातों को यहीं पर रोकते हैं श्रोताओं, और आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। नागिन फिल्म का ये गीत श्रोताओं अभी आप सुनने वाले हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं इस समय अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और श्रोताओं, इस गीत को आपने सुना। इस गीत को सुनते सुनते श्रोताओं, मुझे एक बात याद आ गई और मुझे हंसी भी आ रही थी उस बात पर कि जब हम छोटे थे और ये फिल्म आई थी और जब दूरदर्शन पर हम ये फिल्म देखने बैठे और ये गीत इतना प्यारा था कि जैसे ही इसकी जो शुरुआत होती है एक बीट से होती है और वो बीट सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही वो पिक्चर हम देख रहे थे और ये गीत आता है ना, तो कहीं से मतलब उस टाइम की बात है और हमारे माता पिता आते हैं, कहते टीवी की वॉल्यूम कम करो, टीवी की वॉल्यूम कम करो, नहीं तो सांप आ जाएंगे। तो हम कहते थे क्यों, अच्छा तो लग रहा है ना, तो गाना सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता था ये गाना और हम सुनते थे, और ख़ास करके ये जब बीट बजती थी तब बड़ा ही मज़ा आता था। लेकिन जब बीन बजती तो हमें डांट भी पड़ती थी कि जब बीन बज रही है तो उस वॉल्यूम को बंद कर दो या धीरे कर दो, क्योंकि इसकी आवाज़ सुनकर सांप जो है वो कहीं ना कहीं अपने बिल से बाहर आ जाते हैं। तो श्रोता, उस समय हम बच्चे होते थे और कहते हैं ना कि जो बड़े बोल दें, तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता था कि सच में ऐसा होता होगा। आज तक तो सांप निकले नहीं श्रोताओं, लेकिन वही बात है कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हमसे कहते आए वही हम सुनते आए और आगे हम भी वही बातें कई बार कह देते हैं। तो इस बात से कि यही निष्कर्ष निकलता है कि हम कहीं सुनी बातों को सुनते आते हैं और आगे भी हम उन बातों को वैसे ही लेकर चले जाते हैं। तो खैर, बचपन की एक बात याद आ गई, और हो सकता है कि अभी आपके रेडियो सेट पर यह गीत बज रहा हो और आपके भी किसी दादा दादी नाना नानी ने बोला हो कि भाई रेडियो की आवाज़ कम कर दो, नहीं तो सांप आ जाएंगे। खैर, सांप तो अब नहीं आते श्रोताओं ऐसे, लेकिन हाँ, एक बात जो थी वो याद आई और आपको भी ज़रूर इस बात पर अपनी भी बचपन की एक बात याद आई होगी और ज़रूर बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी भी होगी। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि ठीक 7 बजे समाचारों का समय हो जाएगा, इसलिए समाचारों से पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत। सड़क फिल्म का ये गीत श्रोताओं आप तक भेज रहे हैं अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास की आवाज़ों में। लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को।

0: कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में श्रोताओं, अब समय है समाचारों का, तो चलते हैं पहले सुनते हैं समाचार।
1: जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रेजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अल नीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं

0: उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुँच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत का एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित यह रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंद्र शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह बराइक ने इस्तीफा दिया था। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण यह दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक 20 ओवर में 2 विकेट पर 110 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, समाचारों के बाद और इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और ये समय जो चल रहा है ये चल रहा है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और एक बार फिर से सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। श्रोताओं, बहुत सारे श्रोता हमारे थोड़ी देर बाद यानी कि 7 बजे के करीब ही हमारे साथ जुड़ते हैं और उन्हें भी हमारा राम राम करना बनता है। खैर श्रोताओं, शाम का ये समय है और इस समय में हम लोग अपने सारे काम करने के बाद थोड़ा सा समय अपने लिए निकालते हैं और हमारा ये रहता है कि प्यारे प्यारे गीत सुनवाए जाएं आपको इस कार्यक्रम में। तो चलिए, देर नहीं करेंगे बिल्कुल भी और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत, जब वी मेट, इस फिल्म का गीत लीजिए आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ये गीत आप लोगों ने सुना। और श्रोताओं, गीतों को अगर ध्यान से हम सुने तो इस गीत में भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था जैसे किसी का इंतज़ार हो रहा हो और कल्पनाओं के एक जो जाल है वो बुनते चले जा रहे हों कि जब कोई आएगा जिसका इंतज़ार हो रहा है तो अंगना में फूल खिलेंगे, बारिश होगी। ऐसी कल्पनाएं कई बार हम करते हैं जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं। सच में ये गीत अपने आप में बहुत कुछ कहता था, बहुत कुछ दर्शाता था। श्रोताओं, इंतज़ार का अपना ही एक अलग रंग होता है। कभी किसी अपने के आने का इंतज़ार, कभी बारिश की पहली फुहार का, तो कभी उन पलों का जो ज़िंदगी को मुस्कुराने की वजह दे जाते हैं। इंतज़ार अगर उम्मीद के साथ हो तो हर बीतता पल भी एक खूबसूरत एहसास बन जाता है। श्रोताओं, इन दिनों मौसम भी जैसे सोच में डूबा हुआ लगता है। कभी बादल आते हैं, ठंडी हवा चलती है और लगता है कि अब बरसात होगी, लेकिन फिर धूप झांकने लगती है और हम अपने जो घर के पर्दे हैं उन्हें बंद करने लगते हैं कि सूरज की धूप जो है वो अंदर आके गर्मी ना दे जाए। और श्रोताओं, हो सकता है मौसम भी सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हम सब अपनी ज़िंदगी में अच्छी खबर या खूबसूरत पल का इंतज़ार करते हैं। तो चलिए इस इंतज़ार और उम्मीद के खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आप तक पहुंचा रहे हैं छोटी सी मुलाकात, इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत। श्रोताओं, छोटी सी मुलाकात कब एक अफसाना बन जाए, कब याद बन जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए श्रोताओं, जब भी किसी से मिलिए, मुस्कुरा कर मिलिए। और बहुत सारी मुलाकातें ऐसी होती हैं जो एक ही बार होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल में घर कर जाती हैं। और हमारा ये मानना है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं ना श्रोताओं, तो ऐसे मिलना चाहिए कि हम पहली बार मिले हों, या फिर ये सोच कर मिलना चाहिए आज हम मिले हैं, फिर शायद मिले ना मिले। तो कार्यक्रम में आपने सुना ये गीत, और इस गीत के बाद श्रोताओं, अब हम आगे बढ़ेंगे जानकारियों की ओर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक मध्यस्था मुकदमा मुक्त ग्रामीण भारत की ओर परियोजना के तृतीय चरण को देश भर में प्रारंभ किया जा रहा है। ये जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा आर मिहुल शर्मा ने देते हुए बताया कि इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर छोटे एवं सामुदायिक विवादों का आपसी संवाद एवं सहमति के माध्यम से शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना, न्यायालयों पर बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करना तथा सामाजिक समरसता एवं न्याय तक सहज पहुंच को सुदृढ़ बनाना है। उन्होंने बताया श्रोताओं कि जिला कांगड़ा में परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु 5 गांवों का चयन किया जा रहा है, जिनमें ग्राम स्तर पर सम्मानित एवं समाजसेवी व्यक्तियों का सामुदायिक मध्यस्थ के रूप में चयन करके उन्हें प्रशिक्षित मध्यस्थों द्वारा विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया

किया जाएगा ताकि वे आपसी सहमति एवं संवाद के माध्यम से ग्रामीण विवादों का समाधान कर सकें। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो आप तक पहुंचाई रेडियो कुंचन धर्मशाला ने कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के माध्यम से। और इस जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में फिर से चलते हैं मनोरंजन की ओर और लेते हैं एक और तराना। अपने गीतों की माला से एक और मोती लेते हैं। इस मोती को हम लेकर आए हैं हम दोनों फिल्म से, 1961 की ये फिल्म है श्रोताओं हम दोनों, और इसका गीत अब आप सुनने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत श्रोताओं, और कहीं ना कहीं इन गीतों को सुनकर देवानंद साहब की जो अटकेलियाँ हैं, जो एक्टिंग है, वो हमें याद आ जाती है। और श्रोताओं, सच में अच्छे थे वो दिन, वो पिक्चर और वो गाने जो आज भी हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्हें बस सुनते जाएं और साथ में गुनगुनाते जाएं। बिल्कुल। और श्रोताओं, इन गीतों को संजो कर रखना चाहिए और कभी कभी सुन लेना चाहिए, गुनगुना भी लेना चाहिए। श्रोताओं, थोड़ी सी बात करेंगे कि अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले ही स्टूडियो में लाइट चली गई थी और अंधेरा चारों ओर हो गया था, लेकिन अब लाइट आ गई है। और जैसे ही लाइट आई तो एक चेहरे पर ना खुशी सी आ गई, एकदम से जो लाइट देखकर ना अच्छा लगता है कि चारों तरफ अच्छे से दिखने लग पड़ता है। और अंधेरे में हम लोग ऐसे गुमसुम से हो जाते हैं, थोड़े से मायूस से हो जाते हैं, लेकिन श्रोताओं, ये जो कुछ पल हमारी लाइफ में आते हैं तो कई बार हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। ये जो अंधेरा है श्रोताओं, ये कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी आता है। जब हम कभी निराश हो जाते हैं, हमारे अकॉर्डिंग अगर हमारी ज़िंदगी नहीं चल रही होती है, बहुत से सोच विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उस दौरान हमें लगता है कि हमारे जीवन में अंधकार छा गया है। लेकिन सच मानिए श्रोताओं, ये जो स्ट्रगल आप लोग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, और आप परेशान भी हो, वो दिन दूर नहीं जब एकदम से प्रकाश आएगा और सच में आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तब आपको लगेगा कि आपका वो स्ट्रगल, आपकी वो मेहनत बेकार नहीं गई। बिल्कुल, ये जो छोटे छोटे पल, ये जो छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ में होती है ना श्रोताओं, कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं और कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव वे में भी लेकर चलती हैं। और हम अब आपको लेकर चल रहे हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर, और ज़रूर ये गीत आपको पसंद आएगा, इस बात की गारंटी है श्रोताओं। तो चलिए देखते हैं कौन सा गीत है और आपको पसंद आता है या नहीं। गुमराह इस फिल्म का गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

91.2 MHz पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोता हूँ आज आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और इस गीत और इस अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम में। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में इस समय आकर हम आपको कुछ खास सुनाते हैं। क्या आप सभी जानते हैं वो क्या है? बिल्कुल, जो हमारे नियमित श्रोता हैं वो समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ कहानी की। तो बिल्कुल, जो लोग कहानी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं वो थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए और सुनिए इस कहानी को, क्योंकि ये कहानियाँ कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं, कुछ ना कुछ बता कर जाती हैं। तो श्रोताओं, कहानी का इंतज़ार आप लोग कर रहे थे और आज की कहानी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो मुझे भी अच्छी लगी और सच में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है इन कहानियों से। श्रोताओं, ये कहानी है दो दोस्तों की, राम और श्याम। दो दोस्त थे और दोनों जंगल जाया करते थे लकड़ियाँ काटने के लिए। राम लकड़ियाँ काटता और शाम तक एक गड्ढा बना लेता, छोटा सा गड्ढा उसका तैयार हो जाता, लेकिन श्याम जो था वो थोड़ी सी लकड़ियाँ काटता, फिर थोड़ी देर बैठ जाता, फिर उठता, फिर लकड़ियाँ काटता, फिर बैठ जाता, जबकि जो राम है वो सारा दिन लकड़ियाँ ही काटता रहता था। लेकिन शाम जो है वो थोड़ी सी लकड़ियाँ काटने के बाद बैठकर दोबारा से लकड़ियाँ काटता, और शाम को जब वो लकड़ियों को लेकर जाने वाले होते तो राम की जो लकड़ियों का गड्ढा होता वो छोटा होता था और श्याम का गड्ढा बहुत बड़ा होता था। ये देखकर राम को बड़ी हैरानी होती थी कि मैं सारा दिन लगा रहता हूँ लकड़ियाँ काटने और ये तो लकड़ियाँ काट के थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेता है, थोड़ी थोड़ी देर बैठ के लकड़ियाँ काटता है, फिर भी इसकी लकड़ियों का गड्ढा मेरे गड्ढे से भारी क्यों होता है? तो श्याम ने एक दिन पूछ लिया राम को कि राम ऐसा क्यों है, मेरी लकड़ियों का गड्ढा जो है वो छोटा क्यों होता है और तुम्हारी जो लकड़ियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा कैसे हो जाती हैं? तो राम कहता है कि मैं जब लकड़ियाँ काट लेता हूँ तो थोड़ी देर के लिए बैठकर अपनी कुल्हाड़ी को शापन करता हूँ, यानी कि उसकी जो धार है उसे एक पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उसे तेज़ करता हूँ, और वो जब तेज़ हो जाती है फिर से उठता हूँ और लकड़ियाँ काटने लग पड़ता हूँ, और जब मुझे लगता है कि कुल्हाड़ी लकड़ियाँ काटने में थोड़ी सी सक्षम नहीं है, फिर से उसकी धार चेक करता हूँ और दोबारा से बैठकर उसकी धार तेज़ करता हूँ और फिर से लकड़ियाँ काटता हूँ, जबकि तुम एक ही बारी में लकड़ियाँ काटने पर लगे रहते हो जिससे कि कुल्हाड़ी की जो धार है वो उतनी तेज़ नहीं रह जाती और लकड़ियाँ काटने में तुम्हें वक्त ज़्यादा लगता है। तो श्रोताओं, ये तो दो दोस्तों की आपस की कहानी है या बातचीत है, लेकिन इस कहानी से हमें सोचने को या समझने को क्या मिलता है? हमारी लाइफ में भी बहुत से स्किल्स ऐसे होते हैं, बहुत से एटीट्यूड ऐसे होते हैं जो हमारी कुल्हाड़ियाँ होती हैं, और इन कुल्हाड़ियों को हमें समय समय पर, टाइम टाइम पर तेज़ करते रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यही एक सीख मिलती है कि हम सोचते हैं कई बार कि हम लगे रहेंगे लगातार और कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे, तो वो भी गलत है। थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए, बैठना चाहिए, और कहाँ हम में कमी रह रही है, उस कमी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, उस पर भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थी कहानी श्रोताओं, जो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर सिखा कर गई होगी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो श्रोताओं, ऐसी कहानियाँ हम रोज़ाना आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में, और फिर किसी दिन, किसी और दिन अच्छी सी कहानी फिर से लेकर आऊँगी, और आज के लिए कहानी बस इतनी ही थी। अब इस कहानी के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत ज्वेल थीफ फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को।

0: श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद अब समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोता, कार्यक्रम में आपको आज सुनवाए हमने बहुत ही प्यारे प्यारे गीत और आपके साथ की बातें, और अब बातों के साथ साथ गीत के साथ साथ ही समय हो गया है समाचारों का। तो चलते हैं, पहले सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: सुनिए आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के 8 अस्पतालों में लगेंगी 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीनें। प्रदेश में जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण व मकानों की गणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न। लोगों ने अभियान में निभाई सक्रिय भागीदारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केवाईसी के कारण रुकी वृद्धावस्था व सहारा पेंशन के मामलों की जांच कर तुरंत पेंशन बहाल करने की सरकार से की मांग। कांगड़ा जिला के 131 पोंग विस्थापितों को 5 दशकों बाद मिला जमीन का मालिकाना हक। और नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इस साल अब तक 24 आरोपियों की 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार जिला अस्पतालों व सभी 7 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ कर रही है। आज शिमला में स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, कुल्लू, ऊना, धर्मशाला, पालमपुर व सोलन और जिला अस्पताल किन्नौर, डॉक्टर वाई एस परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल नाहन में 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित की जाएंगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला अस्पताल नाहन व हमीरपुर, क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, सोलन और धर्मशाला में डिजिटल मेमोग्राफी मशीनें भी लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि 42 हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिनमें से 14 मशीनें प्राप्त हो चुकी हैं। इन मशीनों का उपयोग राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में लोगों की जांच के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एम्स नई दिल्ली के मानकों के अनुसार सभी चिकित्सा उपकरणों की खरीद सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण व मकानों की गणना का कार्य 15 जुलाई को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। 16 जून से शुरू हुए इस अभियान में डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर अभूतपूर्व सटीकता और गति से डेटा संकलन किया गया। इस चरण की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वगणना विकल्प की सफलता रही, जिसमें प्रदेश के जागरूक नागरिकों ने डिजिटल सुविधा का लाभ उठाते हुए स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर राष्ट्रीय जनगणना अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। जनगणना निदेशालय ने इस महाअभियान की सफलता का श्रेय प्रशासनिक तंत्र और फील्ड स्टाफ को दिया है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों के बावजूद प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने पूरी निष्ठा से घर घर जाकर डेटा एकत्र किया। हिमाचल प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 30 प्रशिक्षुओं ने अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट के तहत आज कजाकिस्तान के अल्माटी में आधुनिक उद्योगों व स्थानीय बाजार व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जानकारी हासिल की। इस दौरान अल्माटी मैनेजमेंट विश्वविद्यालय में शैक्षणिक संवाद सत्र का आयोजन किया गया। इस दल के साथ दौरे पर गए तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने संवाद सत्र के दौरान कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य इन प्रशिक्षुओं को वैश्विक औद्योगिक प्रणालियों, आधुनिक तकनीकों और अंतर्राष्ट्रीय कार्य संस्कृति से परिचित करवाना है। उन्होंने कहा कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर कार्यक्रम प्रशिक्षुओं में तकनीकी दक्षता, नवाचार और व्यावसायिक उत्तरदायित्व व नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में केवाईसी के कारण रुकी वृद्धावस्था पेंशन और सहारा योजना से जुड़े लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने की सरकार से मांग की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में केवाईसी प्रक्रिया में हुई त्रुटियों व प्रशासनिक लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन से वंचित हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सहारा योजना के कई वास्तविक लाभार्थियों को रिकॉर्ड में मृत दर्शाकर उनकी पेंशन रोक दी गई है, जो उनके साथ अन्याय है। जयराम ठाकुर ने ऐसे सभी मामलों की जिला स्तर पर निष्पक्ष जांच और पुनः सत्यापन करवाकर लाभार्थियों को तत्काल प्रभाव से पेंशन बहाल करने और रोकी गई बकाया राशि भी प्रदान करने की सरकार से मांग की है। उन्होंने इसके लिए विशेष अभियान चलाने की सलाह देते हुए कहा कि पेंशन रोकने की निष्पक्ष जाँच करवाकर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की चनावग पंचायत में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पटियार घाटरू बैटीनाला वाया सीतरी जायन और जुट खुरान संपर्क सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने राजकीय प्राथमिक पाठशाला जुट के नव निर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। इससे पहले विक्रमादित्य सिंह ने हरसिंह धार मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिन 2 संपर्क सड़कों का आज शिलान्यास किया गया है उनका निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिला के 131 पोंग विस्थापित परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देकर 5 दशक पुरानी समस्या का समाधान किया है। झकलेड़, खेरियां, छप्पर, भटोली, फकोरियां और भंगोली के पात्र परिवारों को भूमि के पट्टे मिलने से अब उन्हें स्थायी निवासी प्रमाण पत्र सहित अन्य राजस्व दस्तावेज बनवाने में आसानी होगी। विस्थापित परिवारों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताते हुए कहा कि वर्षों से मालिकाना हक नहीं मिलने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था और अब भूमि का अधिकार मिलने से उनका भविष्य सुरक्षित हुआ है। सरकार ने पहले चरण में हरिपुर के निवासी और दूसरे चरण में भटोली फकोरियां के 42 परिवारों को भूमि के पट्टे दिए हैं। साथ ही प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2,28,00,000 रुपए की अवैध चल व अचल संपत्ति जब्त की है। शिमला पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई कोटखाई व बालूगंज थाने में NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलों पर की गई है। ASP शिमला मेहर पवन ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक 6 मामलों में 24 आरोपियों से 4,11,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा इस साल प्रदेश में केवल शिमला जिला पुलिस द्वारा की गई सबसे बड़ी फाइनेंशियल कार्रवाई है।
2: तस्करी के खिलाफ जिला शिमला पुलिस द्वारा एक ऑल राउंड अभियान छेड़ा गया है। वर्ष 2026 में जिला पुलिस शिमला द्वारा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अब तक कुल 4,11,00,000 की संपत्ति 6 केसों में 24 आरोपियों की जब्त की जा चुकी है, जो इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिला पुलिस के द्वारा किए गए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में सबसे अधिक है। जिला शिमला पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध केवल गिरफ्तारी ही नहीं की जाएगी बल्कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें भी विधि अनुसार जब्त किया जाएगा।
1: भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश को भविष्यवाणी नहीं बल्कि DA और रोजगार चाहिए। आज हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की केवल 16 सीटें आने का दावा करने वाली मुख्यमंत्री की भविष्यवाणी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें इतना ही भरोसा है तो तुरंत विधानसभा भंग कर चुनाव करवा लेने चाहिए। राजेंद्र राणा ने कहा कि पंचायत चुनावों में प्रदेश भर में कांग्रेस को लोगों का जवाब मिल गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के गृह जिला में जिला परिषद की 19 सीटों में से कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली है। सोलन जिला के खील, जशली और आसपास के कुछ गांवों में अवैध निर्माण, हिल कटिंग और बेनामी जमीनों के सौदों के खिलाफ उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। एक गैर सरकारी संस्था द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने वन विभाग को 1 सप्ताह के भीतर जांच कर स्थिति की रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता प्रिया सकलानी ने कोर्ट में बताया कि इन क्षेत्रों में धारा 118 का उल्लंघन कर हिमाचल की जमीनें बेची गई हैं।

0: चीजें सामने आई और जो हमने एक्सप्लोर करी और बहुत उसमें मेहनत करके पता लगाया कि एक्चुअली ये क्या है, यहाँ प्रशासन ने इस गांव को एक आसपास की जगहों पे आंखें क्यों बंद की हुई हैं? पंचायत ने 5 साल वहां पे कदम नहीं रखे, जो काम करती थी एनजीओ करती थी, जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं वो सारी बेनामी सौदे हैं, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उस कंस्ट्रक्शन में इतनी धांधली है, कोई स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट नहीं, कोई सॉयल सर्टिफिकेट नहीं, कोई टीसीपी परमिशन नहीं, 3-3 बिस्वे के लैंड है और उसपे 9-9 मंजिले बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें हमें पता चला ये सारे ही 118 की वायलेशन बेनामी सौदे और नोटराइज डीड्स पे बिके हुए हैं।
1: बरसात के मौसम को देखते हुए कुल्लू जिला में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक साहसिक गतिविधियों पर रोक लग गई है। प्रशासन द्वारा घाटी में बरसात के चलते और सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला हर साल लिया जाता है। अब 2 महीने तक रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियां नहीं हो सकेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के 8 अस्पतालों में लगेंगी 1.5 टेस्ला MRI मशीनें। प्रदेश में जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण व मकानों की गणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न, लोगों ने अभियान में निभाई सक्रिय भागीदारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने KYC के कारण रुकी वृद्धावस्था व सहारा पेंशन के मामलों की जाँच कर तुरंत पेंशन बहाल करने की सरकार से की मांग। कांगड़ा जिला के 131 पोंग विस्थापितों को 5 दशकों बाद मिला जमीन का मालिकाना हक। और नशा तस्करों के खिलाफ

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मुझे पढ़ना है, मुझे उड़ना है।

सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है।

0: अरे पर है असल में चार पहिया, इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुकिए रुकिए रुकिए रुकिए,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी के समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए, फिर
1: ओ यस यस, हां सर,
0: तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल। भैया आखिर जान का है सवाल।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: तो बिजली बचाओ, देश बनाओ।
1: इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर। एक मौत की सौगात है, जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मनाही है कानून है, फिर भी सिगरेट का जुनून है। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें।
2: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
3: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
2: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
3: अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बात। हेलो, नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके।
2: क्या वो पापा जी मान गए?
3: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुकिए रुकिए रुकिए रुकिए,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट फाट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब,
0: हाँ,
1: एक सेल्फी।
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए, फिर।
1: ओ यस यस, हाँ सर।
0: तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल। भैया आखिर जान का है सवाल।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं, वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो, वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो, वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है। यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: तो बिजली बचाओ, देश बनाओ।
1: इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मनाही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान ना करें ना करने दें।
2: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
3: यार तुम्हें तो पता है ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
2: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
3: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
2: क्या वो पापा जी मान गए?
3: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

102 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने,

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपने रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए, फिर
1: ओ यस यस, हां सर।
0: तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, आखिर जान का है सवाल।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: तो बिजली बचाओ देश बनाओ।
1: इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर, एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मनाही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान न करें न करने दें।
2: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
3: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
2: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
3: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
2: क्या वो पापा जी मान गए?
3: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

0: गया।
1: गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ श्रोताओं कार्यक्रम भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना लेकर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला भक्ति गीत।

ये है आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति संगीत।